रसिक हृदय के सन्मुख अपने हृदय की बात कहनी चाहिए। अनेक भांति भजन भक्ति के भेद तैसे ही भक्त हैं, जैसो जाको भाव है तैसी सिद्धि होए, ताते औरन सो प्रयोजन नाही। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, जैसे जिसकी भावना है। कबीर सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। राम झरोखे बैठ के

अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। कहते तहां बखानो है तोए बिगानी कापरी तू अपनी निबेर। अभी तो अपना ही कार्य नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस कहते थे पहले आत्म कल्याण कर ले, पहले अपना कल्याण कर ले, तत्पश्चात ईश्वर की आज्ञा हो तो धर्म का उपदेश करें, उसको माया से लिप्त होने का भय नहीं होगा, नहीं तो निश्चित रूप से स्खलन होगा। हो ही जाता है भाई, यही भगवान की माया का प्राबल्य है। आपको अपने छोटे से अनुभव से कहूं, माया का प्राबल्य क्या है कि वो अनुचित को अनुचित लगने ही नहीं देती। यही तो माया है, जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सुनाई। आपको लगेगा कि उचित है वो अनुचित होगा, और आप उचित समझकर बस करते चले जाएंगे। यही भगवान की माया है। वो हित और अहित का, उचित और अनुचित का, सत और असत का जो भेद है वो आपकी दृष्टि के सामने प्रकट ही नहीं होने देती। और माया क्या है? यही तो है, संसार अपना लगता है, प्रभु दूसरे लगते, यही तो माया है और क्या है। बार बार साधु आपसे कहता है, संत आपसे कहता है, गुरुजन आपसे कहते हैं, कहां समझ में आती? यही भगवान की माया है। पाए रतन चीनो नहीं दीनों करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तो कहते हैं आपको यो चाहिए औरन सो मत्सरता छाण अपनो रस लिए रहे, और याही रस के उपासकन सो अंतर खोल संग करे। और यहां मैं फिर कहूंगा, भगवान ने नवदा भक्ति के उपदेश में बल देकर ये बात कही है कि सुपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा। एक और बात मैं विनम्रता पूर्वक कहूं आपसे, साधक को जितनी हानि परदोष दर्शन से होती है उतनी और किसी भी वृत्ति से नहीं होती। पर दोष दर्शन ही है जो साधक के मन चित्त को कलुषित कर देता है, भजन के अनुकूल नहीं रहने देता। इससे बचने का तो भाई भरसक प्रयास करना चाहिए, और प्रयास क्या, ऐसा तो करना ही है। यही बात अपने और अंतर में रखिए, ऐसा तो करना ही है। ये और भजन साथ साथ नहीं रह सकते, आप में दोष दृष्टि ना हो। सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। श्री व्यास जी के वचन, व्यास विवेकी भगत सो दृढ़ कर की जय प्रीत, अविवेकी को संग तज यह भक्त की रीत। व्यास जी कह रहे बिना कुछ निंदा स्तुति के प्रपंच में पड़े, जो अनुकूल ना हो दूर हो जाइए, जो अनुकूल हो उसका संग करिए, यही विवेक है। तो विवेकी कहा, अब विवेक बताते हैं क्या है। विवेकी तासो कही है जो भली गहे बुरी छाणे, अविवेकी बोले भली बरी कछु ना समझे सब गहे सब छाणे। अब आज तो संसार में ही रमे हैं हम, जैसे किसी का प्रवचन सुन लिया अगले दिन वृंदावन आ गए, बोले अब वृंदावन में ही रहेंगे। और इत व्यवहार ना उत परमारथ, और बीच ही बीच जन्म गमायो। इसीलिए मैं कई बार आपसे निवेदन कर देता हूं, भाई जहां हो वहीं से मार्ग बनाना आरंभ करो, अपने हृदय को पात्र बनाना आरंभ करो। विश्वास रखो जिस दिन आप पात्र हो जाओगे, प्रकृति एक क्षण भी आपको वस्तु से वंचित नहीं रखेगी, क्योंकि ये द्वार तो कभी बंद हुआ ही नहीं, खुला ही है। जीव विमुख है, ठाकुर जी तो सदा सन्मुख है, जीव विमुख है। अपने आप को पात्र बनाना आरंभ करिए। और जो कुछ देर पूर्व आज चर्चा हुई, जीवन इसीलिए रचा है रचनाकार ने, ये संसार इसीलिए रचा है। सीखिए समझिए, चोट भी लगती है तो वो आपको सुंदर बनाने के लिए, सुघड़ बनाने के लिए लगती है। बिना पिटे कोई पहलवान भी नहीं बनता है, चोट भी खानी पड़ती है, वो भी आवश्यक है। बस इसी प्रकार आगे बढ़िए। तो कह रहे अविवेकी भली बुरी कछु ना समझे सब गहे सब छाणे। इसी को मैं कुछ देर पहले संतुलन कह रहा था, जैसे ही अनुपात बिगड़ेगा वैसे ही स्वाद बिगड़ेगा। आप दाल रोटी भी बनाते हो, दाल में भी नमक का अनुपात बिगड़ जाए स्वाद बिगड़ जाएगा कि नहीं? ऐसे ही जीवन है, इसमें प्रत्येक वस्तु का एक अनुपात है। अनुपात में रहेगी वस्तु तो आपको जीवन का स्वाद आएगा, जीवन में सुख मिलेगा, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अच्छा एक और बात, व्यर्थ यहां पर कुछ भी नहीं है, निरर्थक यहां पर कुछ नहीं है भाई, सबकी उपयोगिता है। इसीलिए मैंने कहा कब लेना है, क्या लेना है और कितना लेना है, ये सीख लीजिए। आपको कब लेना है, क्या आपके लिए है, आपके लिए नहीं है। सब अच्छी वस्तुएं भी आपके लिए नहीं होंगी भाई,
एक वस्तु किसी के लिए गुणकारी होती है, वही वस्तु किसी के शरीर को हानि पहुंचा देती है। अपनी अपनी प्रकृति है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको कितना लेना है। यहां पर आकर व्यक्ति अपने अंतर्मन को दूषित कर बैठता है। वो आवश्यकता से अधिक चाहता है, और आवश्यकता से अधिक तो भाई जल भी पी लो तो वह आपको रोगी कर देगा। एक तरफ कहते हैं जल ही जीवन है, पर आवश्यकता से अधिक तो जल भी पी लिया जाए तो आपको रोगी बना देगा, शरीर को हानि पहुंचाएगा। जीवन की आवश्यकता निर्धारित करनी चाहिए शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा में रहकर। फिर कहते हैं ताते सजाती सो मिल बात जुगल बिहार की करे बिचारे तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे बिजाति को परस सुना करे। जो अपने भाव के अनुकूल हैं, जो अपने भाव के साधक हैं, और जो आपके भाव के ही सिद्ध जन हैं, शुद्ध जन हैं, रविदास जी कह रहे हैं उनका संग करें, उनके संग बैठकर प्रियालाल की चर्चा करें, वार्ता करें, चिंतन करें, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे बिजाति को परस सुना करें। और जो अपने भाव से साम्य नहीं रखता, जिसके हृदय में आपके जैसा भाव नहीं है, बोले उसका तो संग त्याज्य ही है, भरसक प्रयास करना चाहिए ऐसे संग से दूर रहने का। और वृंदावन चंद एक प्रीति ही माने, कोटि भांति भावे अपरस रहो भावे सपरस रहो, अनेक आचार करो पर उनको एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। हमारे प्रिया लाल को न तो किसी व्रत उपवास से कोई लेना देना है, ना अपरस सपरस से, वो तो एक प्रीति माने। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कुछ भी करो, विविध भांति व्यंजन करो पर लौन बिना सब फीक। प्रेम ही इष्ट है भाई, प्रेम ही आराध्य है, प्रेम ही प्राप्य तत्व है। अब जब ध्रुवदास जी ने यह कहा कि भाई चाहे अनेक आचार कर लो, तब एक ने कही कि आचार ना करें, अरे नहाने धोने की आवश्यकता ही नहीं है क्या। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं थोड़ो बहुत करें, सदाचार के लिए करें। देखो आपके मन में आग्रह ना हो जाए किसी भी बात को लेकर। एक संत थे, विरक्त थे, अब उनका नियम था कि वो पत्तल में ही पाते हैं भोजन। एक बार किसी के यहाँ जाना हुआ, उनका रात्रि के भोजन के लिए उन्होंने बुलाया था, गांव में वो लोग रहते थे। अब उनके मन में भाव कुछ और था, संत भगवान पधारे हैं, तो जो उत्तम से उत्तम व्यवस्था थी वो उन्होंने उनके लिए की। चांदी के बर्तनों में उन्होंने भोजन परोसा। अब वो संत जी कहने लगे, बोले हम तो भाई पत्तल में ही पाते हैं। अब पत्तल कहाँ से आए, पत्तल उस समय उपलब्ध नहीं हो रही। वो जो महात्मा है वो अपना आग्रह छोड़ नहीं रहे। तो ऐसा आग्रह मन में ना हो, किसी भी स्थिति को लेकर आग्रह मन में ना हो। महर्षि एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने श्री अखंडानंद जी महाराज से पूछा, चर्चा हो रही थी कि एक दुशाला रखा है, एक फटा कंबल, एक विरक्त को क्या ग्रहण करना चाहिए। श्री अखंडानंद जी महाराज ने तत्काल उत्तर दे दिया, बोले निश्चित रूप से फटा कंबल उठाना चाहिए। उड़िया बाबा हंस दिए, बोले नहीं, बोले जिसके लिए फटा कंबल और दुशाला एक से है ना, वो विरक्त है, उसके हिस्से जो आ जाए वो विरक्त है। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, बोले कि मर्जी हुई गर यार की तो घर छोड़कर बैठे, मर्जी हुई गर यार की घर छोड़कर बैठे, जिधर मोड़ दिया मुख वहीं मोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बोले ये वो विरक्त है, इसके मन में आग्रह ना हो। आग्रह हृदय को कठोर करता है भाई, आग्रह से हृदय में ग्रंथि पड़ जाती है। प्रभु की इच्छा से, प्रभु के विधान से जो मिले। रांका बांका जी की कथा बड़ी प्रेरक है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कहते हैं कि भक्ति उनकी ऐसी अद्भुत, और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बड़ी दयनीय है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं। नामदेव जी तो इतने खींच गए और पंडरीनाथ से जाकर कहने लगे आपके भक्त हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, बोले आपको जरा भी लज्जा संकोच नहीं है, आपके भक्तों के पास दो समय का भोजन नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे, बोले हम देना चाहते हैं लेते ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप देना चाहें ये लेने, चलिए हमारे साथ दीजिए। प्रभु गए, नामदेव जी वृक्ष की ओट में खड़े थे, बोले देखना। ठाकुर जी ने कहा, बोले हम आपसे विनती करते हैं। राका माका कहने लगे, अब तो सच में ही कलयुग आ गया। ले क्यों,
बोले मायापति भी अपने भक्तों को माया ही देने का प्रयास कर रहे हैं, माया में ही उलझाने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले प्रभु यदि आप हमें ये देना चाहते हैं तो हमारी आपसे विनती है आप पुनः यहाँ आने का कष्ट ना करें। हम नामदेव जी को तब विश्वास हुआ कि जाही न चाही कबहु कछु, बस तुम संग सहज स्नेह। टाका बाका कहने लगे प्रभु आप हमें दरिद्र समझते हैं जो देने के लिए आए, हमारे हृदय में ये जो आपका प्रेम उच्छलित है हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जानते हैं सर्वोपरि समझते हैं। तब नामदेव जी ने देखा, वही राका बांका एक दिन जंगल में लकड़ी बीन रहे थे, राका आगे आगे चल रहे थे, उनकी पत्नी बांका वो पीछे पीछे चल रही थी। आगे देखा मोहरों की एक थैली रखी है, राका फटाफट से उस पर मिट्टी डालने लगे, बांका पीछे से आई, उन्होंने देख लिया कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या करते हैं आप? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। मुस्कुराते हुए कहा बताइए क्या कर रहे थे आप? बोले यहां ये स्वर्ण रखा था और मुझे लगा कि इसको देखकर तुम्हारे मन में कहीं कोई अन्यथा भाव न आ जाए तो मैं इस पर इससे पहले कुछ बोलते। बोले इसीलिए मिट्टी पर मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे थे। अरे पराया धन है हमारे लिए तो वैसे भी मिट्टी है। तब राका ने कहा आप सच में बांका है, आपका भक्ति का भाव सच में बांका है, निराला है। मेरे लिए तो अभी स्वर्ण और मिट्टी में भेद है पर आपके लिए तो स्वर्ण और मिट्टी में भेद भी नहीं रहा। तो ध्यान रखना भाई, कभी कभी आचार के नाम पर हमारे हृदय में आग्रह हो जाता है और कभी कभी तो हम किसी का हृदय और दुखा बैठते हैं अपने आग्रह और दुराग्रह के कारण। ऐसा ना हो, ध्यान रखना अंतिम भावना जो प्रभु तक पहुंचेगी वो प्रेम ही है, वो आपके हृदय की विशुद्ध प्रीति ही है। अनंत अनंत भक्तों ने भगवान को भोग लगाया होगा, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, पर याद किसको रखा जाता है? झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई और दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। स्मरण तो इन्हीं का किया जाता है। जब श्री जी की सेवा पाक करे तहां आचार करे, बोले जब श्री जी के लिए रसोई करे तो शुद्धता का ध्यान रखे, और फिर भी कह रहे हैं जैसो संभव है, जहां तक संभव हो सके। अब बहुत सारी माताएं कई बार लिखकर प्रश्न पूछती हैं कि भाई घर में हमारी रसोई में तो सब प्रकार की वस्तु बनती है, हम किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करें? आपके ठाकुर जी आपके हैं, आप आपके ठाकुर जी हैं, उनके बीच में न कोई आता है और न किसी को आने की कोई आवश्यकता है, और ना ही आप अनावश्यक रूप से किसी को लाइए, जो आपसे संभव हो। बस प्रेम की कमी ना होने पाए, भाव की कमी ना होने पाए। प्रसाद ही कोटि, फिर कहते हैं अपने प्रसाद पाएवे को बहुत आचार न करें। प्रसाद ही कोटि आचार को स्वरूप है, भोग लागे पाछे बहुत आचार उचित नाही। शास्त्र हूं मैं कही है अति आचार अनाचार समान है, रांधे अन्न विषय कछु ना माने। जो भोग श्रीजू को लागो तो सब बराबर, कहा काचो कहा पाको। वैष्णव सदाचार के लिए आचार करें, मन में विश्वास न धरे कि यही ते कारज सिद्ध होएगो। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि भाई आचार भी करे कब? जब प्रभु को वस्तु निवेदन करनी हो। जब श्री ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद जब स्वयं प्रसाद पाए तो बोले बहुत अधिक आचार विचार का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद ही कोटि कोटि आचार का स्वरूप है। कोटि कोटि एकादशी महा प्रसाद को अनेक अनेक आचार के पालन करने का जो फल है, हो धन धन श्री।

0: पावन।
1: कह रहे रांधे अन्न विषय कछु ना माने, ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें वस्तु बुद्धि भी ना करिए, कच्चा पक्का भी देखना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो मैं देखता हूँ जाड़े के दिन होते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाया फिर वही प्रसाद कुछ देर के बाद पाते हैं तो उसे फिर पुनः चढ़ा देते हैं चूल्हे पर, ऐसा करना अनुचित है। प्रसाद के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, प्रसाद को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ठंडा गर्म नहीं है, प्रसाद कच्चा पक्का नहीं है, प्रसाद ऐसा वैसा नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। प्रसाद का जो परिणाम है ना, सब सुख एक सीथ के स्वाद, वो तो प्रसाद को प्रसाद रूप में पाने पर ही है। आप प्रसाद को वस्तु समझ कर पाओ तो उसका वो फल नहीं है, उसका वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद का भी तो एक प्रसाद होता है ना, प्रसाद का प्रसाद है प्रभु के चरणों का अनुराग और दृढ़ होता चला जाए। अरे भक्त तो भगवान के प्रसाद के बल पर माया को विजय करने की बात करते हैं। उद्धव जी श्री ठाकुर जी से कहते हैं एक आदर्श स्कंद में, ठाकुर जी ने कहा तुमको भी हमारी माया से डर लगता है? उद्धव जी ने कहा हम आपका प्रसाद पाते हैं, आपकी माया हमारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकती है। पर प्रसाद को प्रसाद जानकर पाया जाए। फिर कह रहे वैष्णव तो सदाचार के लिए आचार करे। हाँ, जब आप ये देखें कि आपका अनुसरण कोई और कर रहा है तो जहां तक संभव हो सके, और वैसे भी मुझे लगता है भाई शुद्धता स्वच्छता पवित्रता ये तो एक साधक के जीवन में होना ही चाहिए, पर ये मन में विश्वास नहीं रखना चाहिए कि यदि हम बहुत शुद्ध और स्वच्छ रहेंगे और कोई कम रहेगा तो हमारा कार्य पहले सिद्ध होगा, उसका नहीं। हो सकता है उसके हृदय की प्रीति हमसे अधिक गाढ़ी हो। अब कर्मा बाई तो जूठे दातुन से ही भोग हिलाकर जगन्नाथ जी को पवा देती है, शबरी चक चक कर फल देती है, लक्ष्मण जी नहीं खाते रघुनाथ जी प्रेम से आरोपते, श्री जी की टहल कोटि कोटि आचार को स्वरूप है। यहां ध्रुवदास जी कह रहे भाई सब साधनों की सिद्धि क्या है,

प्रिया जी की जो टहल है, जो सेवा है, ये सब पुण्यों का फल है, सब साधनों की सिद्धि है। और मुझे लगता है यही परम प्रसाद है। जी की सेवा प्रसाद है। बहुत आचार ते हियो अति कठोर हो जाई। हे, मैं आपसे कह रहा था, बहुत आग्रह से हृदय कठोर हो जाता है, ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा भी नहीं लगता। ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा नहीं लगता जो पहले से ही सोच कर आए ऐसा करेंगे वैसा नहीं करेंगे। ठाकुर जी को कैसा हृदय अच्छा लगता है? बोले, जैसा तुम चाहोगे वैसा करेंगे। तभी हमारी भोली सखी गाती है,

ना हमें ऐसा होना है ना हमें वैसा होना है, जैसा आप चाहेंगे वैसा होना है, जैसा आप चाहें। जय विदित तो है अति प्यारी लागो, इसे कहते हैं मन और बुद्धि का समर्पण। ये भजन अति कोमल है और कोमल कठोर एक संग न बने। इसीलिए मैंने आपको कहा था भाई प्रयास करो आपके मुख से कठोर वचन ना निकले, रूखी बात मत कहिए किसी से। रूखी बात का परिणाम प्रतिक्रिया प्रकृति क्या देगी, एक बात तो निश्चित है, सर्वविदित सिद्धांत है, आप जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। आप कठोरता का प्रसार करेंगे, कठोरता आपके पास लौट कर आएगी, हृदय कठोर हो जाएगा, ठाकुर जी के भजन के योग्य नहीं रहेगा। तभी संत बल देकर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए।

0: फल हो।
1: और मुझे लगता है मीठा बोल ये तो ऐसा दान है जो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। सम्मान के दो शब्द तो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। हमारे महाप्रभु जी का गुण है, हमारे महाप्रभु जी का ये गुण है, सबको मान देते हैं, सभी मान प्रद आप अमानी। यही महापुरुषों का गौरव होता है भाई, सभी मान प्रद आप अमानी। अब साधारण मनुष्य जीवन भर इसी खींचातानी में मर जाता, हमें सम्मान नहीं मिला, हमें प्रेम नहीं मिला, हमें सम्मान नहीं मिला। मैं कहता हूं प्रेम बांटिए, प्रकृति का कण कण आप पर प्रेम की वर्षा करेगा। आप जहां जाएंगे आपको प्रेम ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा। प्रेम दीजिए, बांटिए, सम्मान दीजिए, प्रकृति आपको सम्मानित करेगी। और मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, जिसको समय सम्मान देता है, वस्तुतः सम्मानित वही है समय जिसका सम्मान करता है। और समय किसका सम्मान करता है? जो समय का सम्मान करता है। समय का सम्मान क्या है? सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। समय का सम्मान क्या है? जीवन का आदर करना, यही समय का सम्मान करना है। और जीवन का आदर क्या है? कि जीवन का सदुपयोग करिए। जीवन का सदुपयोग क्या है? प्रसन्नता का प्रसार करिए, जिसके लिए प्रभु ने आपको मनुष्य बनाकर इस सृष्टि में भेजा है, इसीलिए आए हैं आप यहां पर। अपने जीवन के अर्थ को, मूल्य को पहचानिए। जो स्नेही भजनीक हैं तिनके घटबड़ क्रिया में मन न दे, आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। अच्छा, एक और बात यहां मैं आपको कहूं, साधु संत जैसे भी भजन करें, बस उनकी जय हो, जय हो, जय हो। रविदास जी कह रहे हैं उनकी घटबड़ क्रिया में मन न दे। पता नहीं उनके हृदय की, उनके भाव की पहुंच कहां तक है। अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको सुनाया, गंगा किनारे लेटे वो साधु, एक युवान साधु कहता है, अरे 10 बज गई अब तक सो रहे हो? अब खबर नहीं वो सो रहा है कि भाव समाधि में है। अब क्या जरूरी है कि ऐसे ही बैठकर ही भजन किया जाए? और मैं तो कहता हूं किसी की भी, साधु की क्या, मैं कहता हूं किसी की भी घटबड़ क्रिया में मन देना ही क्यों है? कौन भला करता है, बुरा करता है? मैं कहता हूं इसका विचार आपको मुझे करना ही क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है? न कहिए न सुनिए। और संत हो फिर तो, नानक कहते हैं संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। संत हो तो फिर तो बहुत सावधान रही, न कहिए न सुनिए। कहीं ऐसे स्थान पर कुछ ऐसा होता हो उठकर चल दीजिए, सम्मिलित मत होइए। मौन रहना भी सम्मिलित होना है, ऐसा मत करिए। रविदास जी कह रहे हैं आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। कह रहे हैं कोटि कोटि आचार उनके एक निमेश के रस भजन पर वार डारी। अब देखने को तो रैदास जूता ही गांठ रहे थे, गोरखनाथ आए, प्रसाद का जल दिया, नहीं पिया। वो जल गया कहां? सिंध, कबीर जी की बेटी ने पिया, बड़े भाव से उसको ग्रहण किया, शिरोधार्य किया। गोरखनाथ जब मुल्तान पहुंचे तो कमाली ने एक क्षण में गोरखनाथ का वो खप्पर भर दिया जो बड़े बड़े सिद्ध नहीं भर पाते थे। तो गोरखनाथ ने पूछा ये कमाल किसका है? बोले वो पानी जो आप छोड़ आए थे उसी पानी का कमाल है, वो जो आप छोड़ आए थे ये उसी पानी का कमाल है। तो रविदास जी यहां यही कह रहे हैं, अरे तिनके एक निमेश के रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डारिए। ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। ब्रह्मा जी को भूल हो गई, ब्रज के ग्वाल बालों को साधारण समझ बैठे, साधारण समझ लिया। तो कह रहे ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। जो यह बात मन में न आवे कह रहे तिन सब अनाचार किए। बोले किसी संत में दोष देखा तो उसके कोटि कोटि आचार बोले धूल में मिलते हैं, वो सब अनाचार है। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। देखो भाई यहां पर केला की कौपीन धारण करने वाले ने भी भगवत प्राप्ति की है और चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठे महाराजा अम्बरीश ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष है कि भगवान उनके लिए कहते अहम भक्त पराधीना। यहां उन्होंने भी भगवत प्राप्ति की है। इसलिए भाई जिस रंग में रहो, जिस ढंग में रहो, जिस संग में रहो, बड़ी बात है। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, प्रभु का भजन होता रहे, हरि का स्मरण ना छूटे, प्रभु का स्मरण ना छूटे। जो स्नेही भक्त हैं तिनकी पदरज कोटि आचार है, साधन सिद्ध तीर्थ है। श्री गुसाई कृष्णदास जी को पद साधु चरण रज सब सुख साधन, यह मेरे मत काज सुधी को। और श्री व्यास जी को पद साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाद। कल ही प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया था श्री शबरी जी का, कि जो जप से नहीं हुआ, तप से नहीं हुआ, योग सिद्धियों से नहीं हुआ, पुण्यों से नहीं हुआ, ज्ञान ध्यान से नहीं हुआ, विद्या से नहीं हुआ, वो कार्य शबरी के चरण धूल से हुआ। ये इसी के प्रतिष्ठा भगवान ने की कि साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाद। और श्री गोसाई कृष्णदास जी तो कहते हैं, बोले संतों की जो चरण धूल है ना, यही सब सुख का साधन है। और बोले मेरे जैसे कपटी का सुधार तो बस इन्हीं चरणों की धूल में लोटपोट होने से ही हो सकता है, और कोई साधन हमारे पास में नहीं है।

0: अनंत लीला अवतार अनेक तिनकी ऐश्वर्यता को पारावार नहीं, ऐसे ही नाना प्रकार के भक्त हैं। श्री कृष्ण लीला तीन प्रकार की, तिन्हों में भेद भक्त बहुत हैं। जहाँ जहाँ जाको मन लाग्यो ते सब नीके हैं घट को नाही। दुर्दास जी कहने भाई ठाकुर जी के अनेक अनेक रूप हैं, अनंत रूप रूप आए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसी अनंत अनंत प्रकार के भक्त हैं। और ध्रुवदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की लीला अनेक प्रकार की है, द्वारिका लीला है, मथुरा लीला है, ब्रज लीला है, उसमें भी सख्य लीला है, वात्सल्य लीला है, माधुर्य लीला है। पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई जहाँ जहाँ जाको मन लागे है ते सब नीके हैं, सब भले हैं, घट को नाही। कभी भी अपने मन में भावना आए कि हम श्रेष्ठ भजन करते हैं, जो प्रभु का भजन करता है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM कुछ छक्के।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
2: कुछ हटके
3: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
4: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ।

0: दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे। उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा जी के विचार।
1: दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? अलग अलग लोगों से अलग अलग बात सुनेंगे, अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देंगे। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, अमीर होने के लिए, पैसा बनाने के लिए कहां इन्वेस्ट करें? कुछ लोग आपको बोलेंगे इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। नीति आयोग भी कहता है कि 2030 तक आते आते $1 trillion का ये बिजनेस होने वाला है और GDP में 13% कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो मैक्सिमम लोग, आपको पुराने लोगों से मिलिए तो बोलेंगे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, वो आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और वो आपको बेस्ट रिटर्न देती है। कुछ और लोगों से मिलिए, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक्स में लगाइए, बॉन्ड्स में लगाइए, इंश्योरेंस में लगाइए, म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, ये आपको बेस्ट रिटर्न देते हैं। कुछ लोग और आएंगे, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक भी नहीं, बॉन्ड भी नहीं, इंश्योरेंस भी नहीं, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड एंड सिल्वर। आज से 60 साल पहले गोल्ड इतने का था, आज इतने का है, उस समय लिया होता तो आज रईस होते। कुछ लोग गोल्ड और सिल्वर के लिए ऐसी ऐसी बात बोलेंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। अलग अलग लोग इन्वेस्टमेंट की अलग अलग परिभाषाएं आपको बताते हैं कि पैसा बनाने के लिए कहां निवेश करना जरूरी है। आखिरी में कुछ बुद्धिजीवी लोग बहुत शानदार बात आपसे करेंगे, वो कहेंगे सब छोड़ दीजिए, सब बेकार की बात है, इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रन एजुकेशन विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। हां बिल्कुल ठीक है कि बच्चों की पढ़ाई में निवेश करने से आपको बेस्ट रिटर्न्स मिलते हैं। साथियों, आज मैं सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच, आपको बता देना चाहता हूं कि कहां इन्वेस्टमेंट आपको कंपाउंडिंग रिटर्न देता है। मैं जो बात आपसे करने वाला हूं वो धमाकेदार बात है। वो बात आपको बताएगी कि कैसे गरीब इंसान अमीर हो सकता है, कैसे कुछ लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं, कैसे कुछ लोगों ने जिंदगी में वो फतेह हासिल की है जो बहुत सारे लोगों के लिए महज एक सपना है। मैं आपको अपना इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूं कि कहां निवेश करना चाहिए। सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आज मैं आपके जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं पे भी बात करूंगा, कहां इन्वेस्टमेंट आपको बेस्ट रिटर्न देती है। मैं बताता हूं, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न। खुद के अंदर निवेश करें, अपने अंदर इन्वेस्टिंग कहां होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत आपको है। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, आपको खुद को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना स्टॉक, ना बॉन्ड्स, ना प्रॉपर्टीज, ना चिल्ड्रन एजुकेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके अंदर इन्वेस्टमेंट की बेहद आवश्यकता है। इन्वेस्टिंग इन योर नॉलेज, योर स्किल्स विल गिव यू द कंपाउंडिंग रिटर्न्स। अगर आप ये जानते हैं पर कर नहीं रहे तो मान लीजिए आप नहीं जानते, अगर आप जानते हैं और कर नहीं रहे तो मान लीजिए आप नहीं जानते हैं। और आखिरी में, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, सबसे बड़ा वेपन चलाते हैं, जानते हैं क्या? लिखता हूं, यह सब किस्मत का खेल है भाई, सब किस्मत का खेल है। वो रईस बन गया, उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। देखो, सोनू शर्मा को 10वीं में मात्र 50% नंबर थे, क्या जबरदस्त नोट छाप रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ, बिकॉज सक्सेसफुल पीपल बिलीव इन कोचेस व्हाइल अनसक्सेसफुल पीपल नोज एवरीथिंग। हमें सब पता है, नहीं चलता, हमने दुनिया देखी है, यह भी नहीं चलता। आपका तजुर्बा आपको जहां तक ला सकता था ले आया, आगे का सफर आपके तजुर्बे से नहीं, नॉलेज से होगा। आज का वीडियो आखिरी तक देखें, आपकी जिंदगी बदलने के लिए यह 12-15 मिनट का वीडियो काफी है। आज मैं आपको वो 5 सफल सिद्धांत बता रहा हूं जिन्होंने कुछ लोगों को शीर्ष तक पहुंचाया। ऐसी पिटारा आपके सामने आज खोलने वाला हूं जो ना आपने सुना होगा ना आपने सोचा होगा। आज की वीडियो को अगर आपने आखिरी तक देखा तो मैं दावा दे सकता हूं कि आपकी लाइफ सुपर सेट हो सकती है। 5 सक्सेस प्रिंसिपल आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, क्या करने से सफलता मिलती है। प्रिंसिपल नंबर वन बहुत शानदार है। क्या? नंबर 1, स्टार्ट योर करियर एज अर्ली एज पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है गाइस, बहुत सफल सिद्धांत मैं आज आपको दे रहा हूं। स्टार्ट योर करियर सुपर अर्ली, जितनी जल्दी हो सके अपना करियर स्टार्ट कर डालिए। वॉरेन बफेट ने अपना करियर 11 साल की उम्र में चालू किया। पहली इन्वेस्टमेंट उन्होंने 11 साल की उम्र में की, दुनिया के टॉप 5 रईस लोगों में से हैं। इसमें भी वो एक बात कहते हैं कि मुझे और जल्दी शुरू करना चाहिए था। जानते हैं मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली का प्रॉब्लम क्या है? मेरा बच्चा बड़ा छोटा है, धूप लग जाएगी, सर्दी में जाएगा तो जुकाम लग जाएगा, अभी उम्र बड़ी छोटी है, खेलने खालने की उम्र है। ऐसी बातें मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को मिडिल क्लास कर देती है। सफल लोग जल्दी शुरू करते हैं। वर्जिन अटलांटिस के मालिक रिचर्ड ब्रांसन ने अपना करियर 16 साल की उम्र में चालू किया। जानते हैं दुनिया के सबसे रईस इंसान एलन मस्क ने अपना पहला सॉफ्टवेयर महज 12 साल की उम्र में बेच दिया। और हमारे यहां 12-13 साल की उम्र खेलने खालने की उम्र होती है, जिस उम्र में दुनिया के दिग्गज लोग अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। मैं आपको ये प्रिंसिपल देना चाहता हूं, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल एंड इफ यू आर अ टीनेजर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय अभी शुरू होता है अगर आपकी उम्र 16-17 साल है, क्योंकि बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको कम से कम 5-8 साल लगेंगे। अगर आज आप 17 साल में हैं, 8 साल और जोड़ लीजिए, 25 साल में आप एक सफल इंसान होंगे। जितनी कम उम्र में शुरू करेंगे उतना ज्यादा समय मिलेगा। प्रिंसिपल नंबर 2 आपको बता देना चाहता हूं, फेल क्विकली बट कीप मूविंग। फेल हो जाइए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई एतराज नहीं है। फेल क्विकली, जल्दी फेल होइए, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट कीप मूविंग, बढ़ते रहिए। मैं आपको एक सबसे अच्छी बात आपके लिए बता देना चाहता हूं, जो लोग अर्ली बिगनर हैं, आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि आप 100% फेल होने वाले हैं। अरे आप बोलेंगे सोनू सर ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं इस दुनिया की, आप 100% फेल होने वाले हैं, सच है, क्योंकि आपने यात्रा बहुत जल्दी शुरू कर दी। अभी आपके पास ना स्किल है ना मार्केट का नॉलेज है, हो सकता है कोई मेंटोर भी ना हो जो आपको बचा सके। स्क्रैच से करोड़पति बनने का एक ही तरीका है, क्या? जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो कर लो। इस उम्र में जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो करो और कन्वर्ट करो उसको एक्शन के अंदर। जब आप मार्केट में चैलेंज फेस करो तो मान लो कि मार्केट आपका टेस्ट दे रही है। डरना मना है, फेलियर इज द पार्ट ऑफ द जर्नी। फेल हो जाइए, जल्दी फेल होइए, बट कीप मूविंग। तीसरा सफल सिद्धांत आपको देता हूं, एजुकेट योर सेल्फ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवरी मिलेनियर एंड बिलेनियर, एजुकेट योर सेल्फ। निरंतर सीखते रहिए, बुक्स पढ़िए, इंटरव्यूज पढ़िए, केस स्टडीज पढ़िए सफल लोगों की, एनालाइज कीजिए बाकी लोगों के बिजनेस। और जानते हैं मजे की बात क्या है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन बहुत चीपर है या एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा आपको इस वीडियो को देखने का, फोकट में देख रहे हैं कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। दुनिया में सबसे सफल बढ़िया ज्ञान फोकट में मिल जाता है दोस्त, बस अफसोस है कि हम सीखते नहीं है। 300 से ज्यादा वीडियो हैं हमारे चैनल के ऊपर, जरूर सब्सक्राइब करिए। 300 से ज्यादा फ्री वीडियोस जहां पर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मैं बार बार कहता हूं, एजुकेट योरसेल्फ, सीखिए, केस स्टडी से सीखिए, सफल लोगों की जीवनी से सीखिए और सारा का सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके अपनी जिंदगी में लगाइए। जहां मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस आज आपके यूट्यूब के अंदर है, जिससे आप सीख सकते हैं कि कैसे अपन सफल हुए। इफ यू वॉन्ट टू रीड अ बुक, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो यह है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है? मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को यह बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है, इन्वेस्ट इन बुक्स, रिकॉर्डिंग्स, हर चीज जो आपकी स्किल को बिल्ड करे। और जितनी छोटी उम्र में स्किल्स डेवलप कर लोगे ना, उतने ज्यादा समय तक उन स्किल्स को यूज कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूं, जितनी छोटी उम्र में स्किल्स डेवलप कर लोगे उतने ज्यादा समय तक स्किल्स को यूज कर सकते हो। कार अगर आपने 18 साल की उम्र में सीख ली और आप 80 साल जीते हैं तो 62 साल तक इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कार 60 साल की उम्र में सीखी और 80 साल तक जिए तो उसका फायदा सिर्फ 20 साल उठा सकते हैं। Become a self-learner. Learn about time management. How to talk. हर टॉपिक पर आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, सीखिए और आगे बढ़िए। प्रिंसिपल नंबर 4 आपको बता देना चाहता हूं, सांसें थाम के बैठिएगा क्योंकि आपको ये डेंट करने वाला है, आपको चोट देगा, आपको पीड़ा पहुंचाएगा कि सोनू सर आज क्या बताने के मूड में आए हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, सेक्रीफाइस सोशल लाइफ। यस बॉयज एंड गर्ल्स, सैक्रिफाइस सोशल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। गुर्बत और गरीबी से निजात पाने के लिए कीमत आपको देनी ही पड़ेगी, यह कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल एक रॉकेट की तरह जिसका सबसे ज्यादा फ्यूल ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने में लग जाता है, आपके जो शुरुआती साल हैं उसमें आपको सोशल लाइफ को बायकॉट करना पड़ेगा। जी हां, 40 घंटा अगर आप एक हफ्ते में काम करते हैं, मैं रिपीट करता हूं, अगर आप एक हफ्ते में सिर्फ 40 घंटा ही काम करते हैं तो ये सिर्फ आपके खाने की पूर्ति करेगा, आपके बिलों का भुगतान करेगा, दैट्स इट। अगर आप 40 आवर्स अ वीक मेहनत करते हैं तो सिर्फ बिल भुगतेंगे आपके, आप एक आम जिंदगी जिएंगे, मर जाएंगे। लेकिन अगर आपके वर्किंग आवर्स 40 से बढ़कर 100 हो जाते हैं, अगर एक हफ्ते में आप 100 घंटा काम करते हैं, यह आपको लाइफस्टाइल देगा, ये आपको जबरदस्त लाइफ देगा और आपको एक अमीर लाइफ को फील करवाएगा अगर आप 100 घंटे काम करते हैं। लेकिन 100 घंटे काम कब करेंगे? जब सोशल लाइफ को बायकॉट करेंगे। कोई फालतू की दोस्ती नहीं, फालतू की रिश्तेदारी नहीं, कहीं फालतू का आना नहीं, फालतू का जाना नहीं, इधर उधर की गॉसिप में खोपड़ी नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना अपने करियर और अपने गोल के ऊपर। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि ये कीमत ही नहीं देना चाहते, क्योंकि ये बिल्कुल आसान नहीं है। आप भी बाकी लोगों की तरह आम जिंदगी जी सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप डिसाइड करिए कि आप कितने घंटे रोजाना अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ऐसी की तैसी कराकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। लोगों के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 7-7, 8-8 घंटे के आवर्स हैं, कैन यू बिलीव इट। दुनिया भर का अनप्रोडक्टिव काम लोग बात करते हैं, कभी इसकी शादी में जाना है, कभी उसके रिश्तेदारी में जाना है, कभी फालतू फंड का गॉसिप करना है, चार दोस्त बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं। यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। 24 घंटे खत्म होने के बाद, वो 24 घंटे दुनिया भर की संपदा देने के बाद भी आपके पास नहीं आते। आपको बॉयकॉट करना पड़ेगा सोशल लाइफ और फोकस करना पड़ेगा अपने करियर के ऊपर। पांचवी सबसे खतरनाक चीज, सराउंड यूर सेल्फ विद हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी कॉस्ट। Highly successful people at any cost। अपना वातावरण सफल लोगों के साथ बनाइए। कुछ भी ऐसा करिए कि आपके आजू बाजू में वो लोग हों जो आपको इंस्पायर कर सकें। कुछ ऐसा रास्ता ढूंढिए, कुछ ऐसी एसोसिएशन तलाशिए जहां पर आपके आजू बाजू के लोग बड़ी बात करने वाले हों, बड़े सपने देखने वाले हों, बड़े आइडियाज हों जिनके पास, और अर्ली बिगिनर्स हों जिनके पास गीता ज्ञान के नाम पर कुछ ना हो लेकिन एनर्जी सुपर फास्ट हो। इन सबकी एसोसिएशन में आप कमाल कर जाएंगे। बींग विद अ विनर मेक्स यू अ विनर and being with a loser will make you a loser। Ladies and gentlemen, ये 5 प्रिंसिपल अगर आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर गए, मैं दावा दे सकता हूं ये साल आपकी जिंदगी का बेहद खूबसूरत साल हो सकता है।

0: रॉकी भाई जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है तो फॉलो करो KGF हेल्थ टिप्स
1: कोलार गोल्ड फील्ड।
0: नहीं, KGF मतलब कीप जिमिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी।
1: ऐसे ही सिनेमैटिक हेल्थ टिप्स जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी को छटके।

0: 89.6 FM।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

इशारों इशारों में बात समझ लेना, दिल के टुकड़े हजारों बिखरने से पहले आज पकड़ लेना।

वीकेंड के बाद एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुन श्री आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। वीकेंड की मस्ती, लेट वेकअप्स और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन के बाद मंडे फिर से दरवाजे पर नॉक करने का टाइम आ गया है। बिकॉज वीकेंड के बाद ना एक ही दिन है जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है, वो है मंडे ब्लूज। तो आज आपके मंडे ब्लूज को दूर करने आई हूँ, आपके वीकेंड वाले मूड को भगाने के लिए आई हूँ और ये बताने के लिए आई हूँ एक गर्मा गर्म चाय के जूस के लीजिए और बस अलर्ट मूड पर आ जाइए। बिकॉज मंडे एक फ्रेश नोट के साथ हमेशा स्टार्ट करना चाहिए सो दैट कि आपका पूरा वीक स्मूथ जा सके। और वीकेंड भी हमें इसलिए मिलता है सो दैट कि हम एनर्जी लेकर आए पूरा वीक काम करने के लिए। वही फिर से वही ट्रैफिक की झंझट, वेदर की मार और बस हर जगह टेंशन ही टेंशन। लेकिन डोंट वरी, बिकॉज कहते हैं ना ट्रैफिक हो या टी, आर्जेंटली इज द की। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ मैं लेकर एंटरटेनमेंट का डबल डोज गर्मा गर्म मसाले वाली चाय के साथ बहुत सारी गपशप। सो एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर मॉर्निंग एक्सप्रेस शो को, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: ਵੇਚੀ ਬੀੜ ਦੇ
1: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
0: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: pasikatan.
1: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
2: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भी करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

मौसम ने ले ली है फिर से अंगड़ाई। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुनश्री आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सुबह अगर वेदर की बात करें तो हाईएस्ट टेम्परेचर जाने वाला है 41 डिग्री। इसी के साथ अगर मिनिमम की बात करें तो 29 डिग्री है, लेकिन विंड स्पीड आज आपको 18 मिलने वाली है और साथ ही ह्यूमिडिटी की अगर बात की जाए 37 है। और इसके साथ ही डे रहने वाला है सनी सनी, यानी कि अच्छा खासा मौसम है आज, अच्छी खासी धूप निकलने वाली है। और इन दिनों ना थोड़ी सी प्रिडिक्शन करना मुश्किल हो गया, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी बारिश और कभी चिल मिलाती धूप। तो बस इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ तो अर्ज किया है।
4: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
3: कर रहे हैं आप, सुनो तो
4: इरशाद।
3: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
4: तुम्हारे नंबर पे?
3: हाँ जी।
4: अच्छा,
3: और उन्होंने पूछा क्या?
4: क्या पूछा?
3: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
4: क्या बात कर रहे हो?
3: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
4: अच्छा,
3: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
4: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
3: नहीं नहीं, रेंट पे है, EMI पे।
4: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
3: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
4: बाय।
3: सुनो तो, कहाँ चली?
4: बाय।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
2: जब गाड़ी में बजे आरजे अंजलि की आवाज, समझो मॉर्निंग हो गई एकदम फर्स्ट क्लास।
4: Sony, yeah. I think about it every day.

जब गाड़ी में बजे आरजे अंजलि की आवाज़, समझो मॉर्निंग हो गई एकदम फर्स्ट क्लास।

पास आता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज, बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स अ लॉट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

सो आज हम एक ऐसा डे सेलिब्रेट करने वाले हैं जो ये बताता है कि दोस्त वो फैमिली होते हैं जो हम खुद चूज करते हैं, बेसिकली उस फैमिली पर हमारा पूरा पूरा राइट होता है। सो वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल बेस्ट फ्रेंड्स डे। बेसिकली एक ऐसा दिन जो उन खास लोगों के नाम है जो हर खुशी और मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं। वहाँ पर वो चार लोग क्या कहते हैं वो नहीं आते हैं। और ये बात हमारे मम्मी पापा भी जानते हैं, और शायद तभी वो कितना भी कुछ कह ले हमारे दोस्तों के बारे में, लेकिन उन्हें पता है एंड मोमेंट पे काम तो वही आने वाला है। सो आज ये दिन ना मैं अकेली नहीं लेकर आई हूँ, आज के दिन एक कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक दोस्त था जो हर एग्जाम से पहले कहता था, भाई टेंशन मत ले सब हो जाएगा, और रिजल्ट के दिन वही सबसे ज्यादा टेंशन में होता था। यही तो दोस्ती है, कभी एडवाइस, कभी सपोर्ट और कभी बिना वजह की हंसी, और इन सब का कॉम्बो बनकर मिलाता है हमारी एक परफेक्ट फैमिली को। सो अगर बात करें बेस्ट फ्रेंड्स, आजकल अगर दोस्ती की बात करूँ तो बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन एक टाइम था जहाँ दोस्ती बहुत मुश्किल से हुआ करती थी, खासकर स्कूल टाइम वाली दोस्ती। सो एक ना बहुत अच्छा तरीका है अपने बेस्ट फ्रेंड को पहचानने का, आपकी हर वियर्ड हैबिट जानता हो वो होता है बेस्ट फ्रेंड, बिना बोले आपका मूड समझ जाए वो होता है बेस्ट फ्रेंड, जरूरत पड़ने पर सबसे पहले खड़ा होता है आपके लिए वो होता है दोस्त, और साथ ही हर मेमोरी को स्पेशल बना दे वो होता है बेस्ट फ्रेंड। तो लाइफ की जर्नी में डेस्टिनेशंस याद रहे या ना रहे, लेकिन दोस्त के साथ किया हुआ सफर हमेशा याद रहता है। तो आज अपने बेस्ट फ्रेंड को एक मैसेज, एक कॉल या

फिर एक थैंक यू जरूर बोलिएगा और उन्हें बताइएगा कि शुक्रिया आपका हमारी जिंदगी में आने के लिए। बिकॉज कहते हैं ना, हर एक दोस्त जरूरी होता है, क्योंकि अच्छे दोस्त लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट होता है। सो माय डियर लिसनर, आज ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास अब तक कोई दोस्त नहीं है ना, तो जाइए, लोगों से बात कीजिए अपनी वाइब के अकॉर्डिंग, अपना एक बेस्ट फ्रेंड ढूंढिए, मेमोरीज बनाइए और साथ ही अपनी जिंदगी में थोड़ी सी हैप्पीनेस और लेकर आइए। और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: तो फिर

कहते हैं ना, अगर कुछ भी अच्छे काम की शुरुआत करनी होती है तो उससे पहले मीठा खा कर जाइए, काम अच्छा होगा। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि मीठा खाना बुरी बात नहीं, लेकिन हेल्थ का बैलेंस बनाना जरूरी है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आर्जेंसी आपके साथ, और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर मैं फिटनेस वाला फंडा लेकर आ गई हूँ। बेसिकली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं डायबिटीज वीक। सो अगर इस वीक की बात की जाए तो एक अवेयरनेस वीक कहा जाता है डायबिटीज वीक को, जो हमें डायबिटीज के बारे में बताता है, प्रिवेंशन के बारे में बताता है, और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के बारे में बताता है। सो यहाँ पर ना एक कहानी आज मैं आपको सुनाती हूँ। सो यहाँ पर एक शख्स हर साल अपनी कार की सर्विसिंग टाइम पर करवाता था, लेकिन अपनी हेल्थ चेकअप्स को हमेशा पोस्टपोन करता रहता था। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन उसे समझ आया कि बॉडी भी एक मशीन की तरह है, जितने केयर दोगे उतना बेहतर साथ देगी। तो ये कहानी आपके लिए थी, एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए, बिकॉज हम इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए चल रहे हैं अपने कंधों पर। कभी सोचा है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए खुद की मेंटेनेंस तो लगेगी ना, यानी कि एक बेहतर लाइफस्टाइल, एक अच्छी डाइट, प्रॉपर स्लीप और अपनी एक्स्ट्रा केयर, बस इतना ही चाहिए हमें। एंड फिर देखिएगा कि हम हर बीमारी से जीत सकते हैं। अगर बात करें ना डायबिटीज की, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर डायबिटीज है क्या। सो डायबिटीज एक कंडीशन है जिसमें बॉडी ब्लड शुगर लेवल्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ना बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो इन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए ना आप हेल्दी हैबिट्स अपना सकते हैं। टिप ऑफ द डे ये है, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, बैलेंस्ड मील लीजिए, साथ ही प्रॉपर स्लीप एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। कई बार क्या होता है, हम सारी चीजें कर रहे होते हैं लेकिन हेल्थ चेकअप नहीं कराते, ये सोचते हैं कि अगर कुछ नहीं आया तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। बट ये तो अच्छी चीज है ना, अगर कुछ नहीं आया तो इसका मतलब है कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हो। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि हेल्थ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट आज करोगे तो फ्यूचर में रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। सो यहाँ भी आज मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की है, लेकिन ये हेल्दी इन्वेस्टमेंट है। एंड इस डायबिटीज वीक अपनी और अपनी फैमिली दोनों की हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं म्यूजिक।

0: है?
1: नहीं नहीं रेंट पे है, ईएमआई पे।
0: खैर अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: जब का फालूदा कर दिया यार।
0: बाय।
1: सुनो तो कहाँ चली।
0: बाय।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
0: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

अपनी फिटनेस ग्रेस और कॉन्फिडेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर चलती हैं, जिन्हें कहा जाता है शिल्पा शेट्टी। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ, और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ हम हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं बॉलीवुड की एक फिटनेस फ्रीक यानी कि शिल्पा शेट्टी का। सो अगर इनकी बात की जाए तो 90s में शिल्पा ने कई हिट फिल्मों से ऑडियंस का दिल जीता। फिर चाहे बात की जाए बाजीगर की, धड़कन की, या फिर बात हो फिर मिलेंगे, उनके परफॉर्मेंसेस को काफी सराहा गया। और इतना ही नहीं, एक्टिंग के साथ साथ इन्होंने फिटनेस और वेलनेस को भी एक लाइफस्टाइल मूवमेंट बना दिया है। अगर बात करें शिल्पा की तो आइए ये जानते हैं कि क्या इन्हें इतना स्पेशल बनाता है। स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस रखती हैं, फिटनेस इंस्पिरेशन है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करती हैं, ग्रेस और कॉन्फिडेंस अपने साथ ले चलती हैं। शायद यही रीजन है कि हर एरा में इनके फैन फॉलोइंग आपको बहुत सारी मिलेगी। खुद को हर फेज में री इन्वेंट करना है तो असली सक्सेस क्या होती है शिल्पा शेट्टी से सीखनी चाहिए। सो चलिए इन्हें विश करते हैं रेडियो महारानी विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे शिल्पा। अब ऐसे ही हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो।
1: कैसी?
0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
2: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय।

अगर बात की जाए बॉलीवुड के कुछ किरदारों की या फिर कुछ कलाकारों की, तो कुछ एक्टर्स सिर्फ फिल्म्स में काम नहीं करते, वो हर जनरेशन के साथ इवॉल्व होते रहते हैं। सो आज इसीलिए हम बात कर रहे हैं डिंपल कपाड़िया की, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से अपने फैंस का दिल इस कदर जीता है कि आज भी लोगों के दिलों पे राज करती हैं। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है बॉलीवुड की एवर ग्रीन एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया का। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने बॉबी से डेब्यू किया और ओवरनाइट सेंसेशन बन गई। फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि डिंपल यूथ आइकन बन गई। और इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने सागर, क्रांतिवीर और हाल के सालों में पठान जैसी फिल्मों में अपनी वर्सेटैलिटी दिखाई। और अगर बात करें डिंपल की, तो आइए ये जानते हैं कि क्या इन्हें इतना खास बनाता है। डिंपल कपाड़िया उन एक्ट्रेस में से हैं जिन्होंने हर डिकेड में खुद को इवॉल्व रखा है। फिर चाहे बात की जाए 70s की, तो 70s की टीन सेंसेशन से लेकर आज की पावरफुल कैरेक्टर एक्ट्रेस तक का सफर काफी इंस्पायरिंग माना जाता है। स्टारडम मिल सकता है, लेकिन उस डिकेड्स तक मेंटेन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये हमें डिंपल कपाड़िया जी ने सिखाया है। सो चलिए आज इन्हें विश करते हैं, रेडियो महारानी विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आप ऐसे हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, साथ ही अपने फैंस का दिल जीतते रहें और सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशी, आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। सभी को पता है कि गर्मियों का सीजन है और गर्मियों का सीजन अपने पीक पर रहते ही ना एक चीज बहुत तेजी से बढ़ती है, वो है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। सो ऐसे में एसी और कोल्ड ड्रिंक्स ही काफी नहीं है, बल्कि अपनी बॉडी को अंदर से कूल और हेल्दी रखना भी उतना ही जरूरी है। और बस इसलिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस पे हेल्थ हाजिर है में योगा वेलनेस वीक, जहाँ हर दिन आपको टिप मिलेगी इन गर्मियों में खुद को किस तरह से प्रिवेंट करना है। सो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योगा एक्सपर्ट सौम्या जी, जो हमें ये बताएंगी कि समर सीजन में योगा की हेल्प से हम खुद को हीट एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन और सीजनल हेल्थ प्रॉब्लम से कैसे बचा सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सा योगासन, ब्रीदिंग टेक्निक्स और डेली हैबिट्स आपको इस गर्मी में फिट और एनर्जेटिक रख सकती है, तो बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ, जहां पर बातों का सिलसिला आज थमने नहीं वाला, बल्कि आज हमें ज्वाइन कर रही हैं सौम्या जी। सो बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक कहीं मत जाइएगा, बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
2: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी जिलायक
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
3: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बुरा तो सुन के जाओ। हेलो, सुनो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्जुन नहीं होता अर्ज, अर्ज
3: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद
1: ब्रॉडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ अर्जुन जी आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ हम इस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं योगा वेलनेस वीक। सो हेल्थ हाजिर है में आज हम बात कर रहे हैं इस गर्मी के सीजन में खुद को किस तरह से बचाया जा सकता है इस बढ़ते टेम्परेचर से, हीट एग्जॉशन से, साथ ही डिहाइड्रेशन से, और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। आज रेडियो महारानी के स्टूडियो में जुड़ चुकी है सौम्या जी, जो की एक योगा टीचर है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और टिप ऑफ द डे जानते हैं।
1: सुबह में अगर बात करें गर्मी में, तो गर्मी में बॉडी को कूल कैसे रखें योगा से।
2: गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ सौम्या, योगा एक्सपर्ट। अभी अंजलि ने मुझसे पूछा कि गर्मियों में कैसे अपने आप को कूल रखा जाए। द कूल रखने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप आसन करें और रोज अपने शरीर को समय दें। अपने शरीर को समय देना शुरू कीजिए। द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग टाइम टू योर बॉडी, जैसे ही आप अपने शरीर को समय देते हैं, आपकी बॉडी आपको सब कुछ बताने लगती है। उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, यू डोंट नीड टू आस्क एनीवन। आपको किसी से पूछना ही नहीं पड़ता है। बॉडी बताती है आपको क्या खाना है, कैसे चलना है। एक प्यारा सा रिश्ता बनाना है शरीर के साथ। और आज क्या हो गया अंजलि, हम सबके साथ रिश्ता बनाए बैठे हैं, सारी दुनिया के साथ, लेकिन अपने शरीर के साथ रिश्ता छूटता सा जा रहा है। इसलिए दुनिया वालों से पूछते हैं, कॉल्स करते हैं, चैनल्स पे देखते हैं कि क्या खाएं, कैसे करें। सो बहुत इजी है, बहुत ही इजी। आप अपने साथ बैठे थोड़ी देर के लिए। इसके लिए आपको बहुत डिफिकल्ट आसन नहीं करने हैं। जब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम योगा कैसे करें, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो योगा करने के लिए योगा आसन नहीं है, इट्स सच अ स्मॉल थिंग। आप अपने साथ बैठे एंड द फर्स्ट थिंग अपनी श्वास को देखना शुरू करें। उसके बाद टेक्निकली तो हम फर्दर बाद में जाएंगे। तो द फर्स्ट थिंग अपने साथ बैठे और अपनी ब्रेथ को देखना शुरू करें। एंड सेकेंडली अ वेरी इजी शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करें। शीतकारी प्राणायाम करते ही आपकी बॉडी नेचुरली अपने आप बॉडी सेट हो जाएगी इस गर्मी के मौसम में। सो आप शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करें। शीतकारी प्राणायाम करते ही आपका मन एकदम से कूल डाउन हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बॉडी अपने आप को उस मौसम के हिसाब से एडजस्ट कर लेगी। और क्या चीज आपको जहाँ पर आप रह रहे हैं, मे बी इन दिल्ली ओनली, वी आर स्टेइंग इन दिल्ली ओनली, बट फिर भी जिस रीजन में आप रह रहे हैं उसके हिसाब से आपको बॉडी गाइड करेगी कि आपको ये खाना है, ये पीना है, सो दैट आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे और बॉडी सेट हो जाएगी।
0: थैंक यू सो मच सौम्या जी, हमारे लिसनर्स तक इतनी खूबसूरत बातें पहुंचाने के लिए और ये बताने के लिए कि बीट द हीट यानी समर सीजन, खुद को गर्मियों से किस तरह से बचाना है। और बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन आज नहीं, आपसे फिर मिलेंगे कल एक नए टिप ऑफ द डे के साथ। और बस यही कहना चाहते हो लिसनर्स, योगा से ही होगा। सो अपनी फिटनेस का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, साथ ही बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

सो गाना है ढिंडोरा बाजे रे, और इसी गाने के साथ ना बस मेरा भी टाइम हो गया यहाँ पर ढिंडोरा बजाने का कि अब फाइनली मेरा टाइम हो गया यहाँ से जाने का। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आज जाऊंगे तभी तो कल आऊंगा, लेकिन मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। आप फिर मिलेंगे रेडियो महारानी 89.6 FM पर, जहाँ पर मैं आती हूँ मंडे टू फ्राइडे 7 to 10 AM, जहाँ पर आपसे बहुत सारी बातें करती हूँ आपके साथ, सोशल से आपस से लेकर आपके शहर में ट्रैफिक एंड वेदर की क्या अपडेट है ये भी आपको बताती हूँ, और साथ ही क्या कुछ खास होने वाला है ये भी आपको बताती हूँ। सो भाई बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन आज नहीं कल मिलेंगे, कल सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। दिस इज योर आरजी अंशिक साइनिंग।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुने।
2: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
3: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
8: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
9: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मौसम के बारे में, जहाँ बात की जाए अभी 10:07 हो रहे हैं और तापमान की चर्चा करूं तो 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना हुआ है शहर का, और जहाँ आज दिन भर बादल छाए रहने की उम्मीदें हैं। हालांकि क्या हुआ कहने, अभी तो अच्छी खासी धूप निकली हुई है और मौसम विभाग का कहना है वैसे आने वाले अब 3-4 दिन तपिश बढ़ती रहने वाली है, उसके बाद वीकेंड के मौके पर रात के आसार हो सकते हैं फिर से बारिश और बादल छाए रहने की उम्मीद है। हम देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, कभी और मौसम विभाग का जो कहना उससे उलट फेरे होकर के कुछ डिफरेंट ही हो जाता है। साथ ही अगर बात की जाए AQI के बारे में, AQI 100+ की ओर जाता दिखा, जहाँ 150 तक पहुँचा AQI, तो AQI को कंट्रोल करना हमारा फर्ज बनता है, तो हम लोग जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो जरूर करें। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्राई।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ बात करते हैं दोस्तों फरीदाबाद के खिलाड़ियों के बारे में, जहाँ बैडमिंटन में खिलाड़ियों ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया। बैडमिंटन चैंपियनशिप जो ऑर्गेनाइज की गई, इसमें अंडर 11, 13 और 15 के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर 11 में बॉयज में आलोक आयांश आनंद और लक्ष्य चौहान, नक्शे भारत भव्यांश पंगाल ने शानदार प्रदर्शन किया और अगले मुकाबले में एंटर किया। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस है, जहां पे देखिए बच्चे अभी स्टेट लेवल पर पहुंचेंगे, फिर आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, तो इन सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना हमारा फर्ज बनता। ऑल द बेस्ट सभी खिलाड़ियों को एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इस वनिंग कॉम्पिटिशन के लिए। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों बात करते हैं शहर की साफ सफाई और शहर की सुंदरता को लेकर। जहाँ देखिए बहुत सी जगहों पर डेवलपमेंट, नए चौक चौराहे, पार्क्स मेंटेन किए जा रहे हैं, तो आपसे इतनी बात कहना चाहूँगा कि देखिए गार्बेज प्लीज ऐसे डंप ना करें। कहीं पार्क्स में जा रहे हैं, ऐसे स्पॉट्स पर जा रहे हैं, फेवरेट स्पॉट्स पर कुछ खाइए पीजिए, बिल्कुल खाइए पीजिए, इंजॉय कीजिए, लेकिन वो जो उसका बचा हुआ रैपर है या बॉटल है उनको कलेक्ट कर लीजिए, जहाँ डस्टबिन दिखे वहीं डालें, अदरवाइज घर आके घर के डस्टबिन में डालें। जहाँ डिपार्टमेंट इतने सुंदर तरीके से शहर को डेवलप करते नजर आ रहा है, तो इतना ही योगदान तो हम भी कर सकते हैं, उन चीज़ों को उतना ही मेंटेन रखें कि दूसरी बार वहाँ जाएँ तो हम उतने ही शौक से उतनी खूबसूरत जगह को वापसी देखें जितनी पहले से मेंटेन जगह पर हम लोग गए। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वॉर्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वॉर्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेयर शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यह हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से सुंदर पौनम की कश्मीर स्केड्यूल के बारे में, जहां संध्या मल्होत्रा ने कुछ फोटोज भी शेयर करी और कश्मीर स्केड्यूल रैप अप हो गया ऐसी चर्चाएं भी चल रही है। जहां बात करें इस कहानी में संध्या के अलावा आदित्य सेल पलकित का नाम भी आया। अभी स्टोरी और रिलीज डेट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई। जहां बात करें संध्या मल्होत्रा की सुंदर पौनम से कश्मीर की चर्चाएं जहां चल रही, यानी कि शूट और फिल्म सेटअप बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। सुंदर पौनम में क्या कहानी लाने वाली है संध्या मल्होत्रा, क्या कुछ क्रिस्पी होगा या रोमांटिक कॉमेडी और थोड़ी इमोशनल वाइब्स भी नजर आएंगी। रहेगा इंतजार रिलीजिंग का, बाकी ऐसी भी चर्चाएं होती रहेंगी। उससे पहले कॉर्ड

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: लागे गराज, गराज की ये मैकेनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसले रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा है लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं नाग जिला के बारे में। नाग जिला कार्तिक आर्यन के डबल रोल के बारे में चर्चा, जहाँ हीरो और विलन दोनों के शेड्स प्ले करेंगे। नाग जिला नाग लोक का पहला भाग है, जहां पर कहा जा रहा है कि इस कहानी को 12 फरवरी 2027 को रिलीज किया जाएगा। कार्तिक यहाँ पे प्रियम वदेश्वर प्यारे चंद नाम के छाधारी नाग के रोल में होंगे। जय कास्टिंग अभी फाइनल स्टेज पर है और अनिल कपूर और बॉबी देओल में से किसी का नाम डिस्कस हो रहा है बाकी कास्टिंग के लिए। अब यह डबल रोल के किरदार में क्या कुछ डिफरेंट लेकर के आने वाले कार्तिक, इस बार कुछ डिफरेंट कहानी है। मुझे लगता है कि पूरे सिल्वर स्क्रीन स्टेज में जहां पिछले कुछ वक्त में डिफरेंट कहानी लाने वाले हैं, तो वो कार्तिक आर्यन है। नागदाई से जुड़ी कहानियां पहले भी आई लेकिन बहुत लंबे अरसे से कहीं ना कहीं गायब थी। अब ऐसी कुछ कहानी लेकर के आ रहे हैं, देखते क्या धमाल मचाएगी ये कहानी। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले का और खूबसूरत ट्रैक ओनली ऑन रेडियो।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है. होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं.
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से. हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है.
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक. हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर.

0: your voice. I am singing song.
1: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करें अल्लू अर्जुन और बसिल जोसेफ के अपकमिंग प्रोजेक्ट शक्तिमान पर बेस्ड नहीं होने वाला। काफी लंबे अरसे ये चर्चाएं चल रही थी कि शायद इनका अगला प्रोजेक्ट शक्तिमान से इंस्पायर्ड। मेकर्स की तरफ से कंफ्यूजन क्लियर कर दिया गया और कहा जा रहा है कि सेपरेट ओरिजिनल प्रोजेक्ट है जो अभी अर्ली स्टेज पर है। अरुण अनिरुद्धन ने कहा है कि अल्लू अर्जुन बसिल जोसेफ फिल्म है और उसका शक्तिमान से कोई कनेक्शन नहीं, ये कुछ डिफरेंट होने वाला है जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग हो। अब लेटेस्ट चर्चाएं तो यही हैं कि ऐसा नहीं है। अब इसे पूरी कास्ट क्या होने वाली है, क्या ये एक नया सुपर हीरो जन्म लेता नजर आएगा या इसे कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाइक सिंघम होने वाला, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं रहेगा, इंतजार। बाकी ऐसी भी चर्चाएं होती रहेंगी। उस सवाल एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम को छटके।
0: Your voice, I am singing song.

0: to dance Basanti.
1: फिल्मी ट्विस्ट से लेकर नए सॉन्ग की लिस्ट तक सुनते रहिए फिल्मी फ्लेवर रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके पर।

0: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी। यहां बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से सामक अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म के बारे में, जो कि कहा जा रहा है कि एलियन एक्शन थ्रिलर कहानी होने वाली है। विपुल शाह जहां कहानी को प्रोड्यूस करते नजर आ रहे हैं और कविश वर्मा डायरेक्ट। फिल्म को 2023 में रिलीज किया जा सकता है और कहा जा रहा है ये जो फिल्म एलियन सर्वाइवल थ्रिलर कहानी के रूप में दिखाई जाने वाली है। पहली लार्ज स्केल ऐसी कहानी कोई होने वाली है और कुछ एक्सपर्ट्स भी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं जो इसे काफी एम्बिशियस बना देते हैं। अक्षय ने कहा कि उनकी स्क्रिप्ट और सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगा और ये उनके लिए एक टोटली न्यू जन फिल्म होने वाली है। देखते हैं अक्षय कुमार की ये कहानी क्या धमाल मचाते नजर आएगी, क्योंकि वो कुछ डिफरेंट ही आने वाला है इस कहानी में। एलियन सर्वाइवल क्या होने वाला है, रहेगा इंतजार। बाकी ऐसी भी चर्चाएं होती रहेंगी, उस सब एक और खूबसूरत सा ट्रैक।
1: डार्लिंग आंखों से

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं जॉली अल अलबी 3 के ओटीटी प्रीमियर के बारे में, जहाँ बात करें 14/26 को था और ये ओटीटी पर स्ट्रीम हुआ। और कहा जा रहा है अक्षय कुमार और अर्शद वारसी वाली कोचो जामा इस कहानी को अच्छा खासा प्यार मिला। अब बात करें जीतले भी इसी वीक ओटीटी लाइनअप में है और ये 12 मई 2026 से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हुई। कजन्स एंड कल्याणम ओजी लिस्ट में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कजन्स और कल्याणम का भी मेंशन था, जहाँ कहा जा रहा है इस कहानी को भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जा चुका। तो इन सभी कहानी को लेकर बढ़ाई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, बताइए कौन सी कहानी लगी आपको ज़्यादा बेहतर। बाकी ऐसी भी चर्चा करता हूँ, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: स्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब बात कर रहे हैं सिनेमा के गलियारे से एक और बढ़िया कहानी के बारे में। हसवे क्वालिटी की अगर बात जहाँ हम लोग कर रहे थे कि कौन कौन सी कहानियाँ स्ट्रीम होने को हैं तैयार, जहाँ पे देखिए बढ़िया बढ़िया कहानी सिनेमाघरों में आए दिन रिलीज होती नजर आती, वही बात करें रहस्य से भरी एक और बेहतरीन कहानी सबके सामने है तैयार। करिश्मा कपूर क्रांत कहानी जिसको हाल फिलहाल स्ट्रीम किया गया। करिश्मा कपूर लीड किरदार में इन्वेस्टिगेशन स्टोरी साइकोलॉजिकल मर्डर इन्वेस्टिगेशन स्टोरी। बात करें यहाँ पे मूडी और शो बन नॉट टाइप का है यहाँ पे कास्ट में, जहाँ जिशु सेन गुप्ता सोनी रजदान और सूर्य शर्मा भी नजर आ रहे हैं। कोलकाता के हॉन्टिंग बैकड्रॉप और सीरियल किलर हंट के साथ ये कहानी सबके सामने आई है, जहाँ करिश्मा बहुत लंबे अरसे बाद किसी किरदार में दिख रही है और बिल्कुल डिफरेंट किरदार उनके अब तक के करियर का। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जन

तू पीआर है, इस खातिर तेरे तक करे प्यार कोन्या। हर सारी दुनिया में जागी टोलिए, तने जाट बरगा मिलेगा यार कोन्या। हर मैडम है दिन में सिपटा, रात ने स्टूडियो में गावे, मने तेरा जैसा देखा स्टार कोन्या, तेरा जैसा देखा स्टार कोन्या।

0: और भैया क्या हाल चाल। हम अपने घर की फर्श चाहे जितनी अच्छी क्यों ना कर लें भैया, गाड़ी चलाना तो सड़कों पर ही है, सड़क पर तो गड्ढे ही गड्ढे हैं, उसका क्या।
1: अरे उसके लिए तो नगर निगम है ना।
0: कहाँ है, सालों से यही सुनते आ रहे हैं। ऐसा लगता है सड़क पर गड्ढे नहीं, गड्ढों के बीच में थोड़ी सी सड़क है। किसी भी गली में जाओ, लोग दिखे ना दिखे, जगह जगह पर कचरे का ढेर जरूर दिख जाता है। और अगर रात के अंधेरे में कहीं बाहर निकल जाओ तो घर से टॉर्च लेकर जरूर जाना भैया, क्योंकि स्ट्रीट लैम्प तो ऐसे गायब हो गई हैं, जैसे दुनिया से डायनासोर। अब ऐसा नहीं चलेगा भैया, अब ब्यूटी पार्लर जाकर मेकअप हो ना हो, पर नगर निगम का मेकओवर होना बहुत जरूरी है।
2: तो आज से अपने अधिकारों का करेंगे सही इस्तेमाल, चुनेंगे वही जो होगा नगर के लिए सही।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस. कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था.
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश.
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया.
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है.
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया.
6: आवारा हूँ, आवारा हूँ.
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है. तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM. कुछ हटके.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के कैलेंडर में, आज बर्थडे बॉलीवुड उस एक्ट्रेस का है जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही ऐसा धमाका किया जो पूरा देश उनका दीवाना हो गया। सोचिए सिर्फ 16 साल की उम्र, पहले फिल्म और सीधा सुपर स्टारडम। बात करते हैं उस एक्ट्रेस की जिनकी स्माइल, कॉन्फिडेंस और स्क्रीन प्रेजेंस ने 17 से लेकर आज तक ऑडियंस को अपना फैन बनाए रखा है। कौन है वो नाम बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए यार, और सुनिए खूबसूरत से गाने, फिर लौट के आकर के बता रहा हूँ कौन सी है वो स्टार।

0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।

जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए।

हाय कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला हाँ। अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखो

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं टिम्पल कबाड़िया के बारे में, जहाँ आपको बताया कि कितनी बेहतरीन स्टार रही बॉबी और स्टारडम मिलता नजरा 1973 में एक फिल्म आई और इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में रोमांस का एक नया चैप्टर लिख दिया। बॉबी इस फिल्म में टिम्पल कबाड़िया ने बॉबी ब्रगंजा का रोल निभाया और उनकी पॉपुलैरिटी रातों रात आसमान छू गई। उनके अपोजिट थे ऋषि कपूर और दोनों की जोड़ी उस दौर की यूथ आइकन बन गए। फिल्म के गाने, फैशन और डिंपल का लुक इतना पॉपुलर हुआ कि हर तरफ बस बॉबी की ही चर्चा थी। कहते हैं बॉबी के हिस्टोरिक सक्सेस के बाद डिंपल ने कुछ समय के लिए फिल्म से दूर रहा, लेकिन जब उन्होंने कमबैक किया तो और भी पावरफुल रोल्स के साथ किया। सागर, रुदाली, क्रांतिवीर और रुदाली के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया। ये दिखाता है कि वो सिर्फ ग्लैमरस स्टार नहीं, एक ब्रिलियंट परफॉर्मर भी रही। बाकी ऐसी भी चर्चा राता रहूंगा इनके बारे में, लेकिन सुबह कुछ और खूबसूरत से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात कर रहे हैं डिंपल कपाड़िया के बारे में जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 5 दशकों से ज्यादा के करियर में डिंपल ने हर जनरेशन को अपना फैन बनाया। रोमांटिक हीरोइन, इंटेंस एक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रोल्स और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स तक उन्होंने हर फेस में खुद को रीइन्वेंट किया। आज भी जब बॉबी का नाम आता है एक पूरा दौर याद आ जाता है और डिंपल उस दौर की सबसे चमकदार पहचानों में से एक नजर आती है। ऐसी बहुत सी चर्चाएं होती रहेंगी लेकिन आज से उसमें मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जगह करूंगा ढेरों बातें। तब तक सुन रहे रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके और ये ट्रैक आप सभी

0: केवाईसी अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और एटीएम दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा केवाईसी तो ऑलरेडी अपडेटेड।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हर ब्लॉकबस्टर के पीछे एक चेहरा होता है जो पोस्टर पर नहीं होता, जिसकी फोटो थिएटर के बाहर नहीं लगती, लेकिन अगर वो इंसान ना हो तो शायद फिल्म भी ना हो। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो होता है फिल्म डायरेक्टर यानी कि आदित्य धर। और आदित्य धर की कहानी भी उसी तरह के एक इंसान की कहानी है। आज जब भी आदित्य धर का नाम लिया जाता है, लोग तुरंत उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को याद करते हैं। नेशनल अवार्ड, ब्लॉकबस्टर कलेक्शंस, आइकॉनिक डायलॉग्स और वो फेमस लाइन हाउ द जोश, ये तो सबको याद है। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी स्पॉटलाइट से नहीं हुई थी। आदित्य धर का जन्म दिल्ली में हुआ। बचपन से ही उनका इंटरेस्ट फिल्म में था, लेकिन उन्हें सिर्फ फिल्में देखना पसंद नहीं था। वो उन लोगों में से थे जो फिल्म देखते वक्त ये सोचते थे, ये सीन ऐसे क्यों लिखा गया, ये कैरेक्टर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, अगर मैं होता तो इस कहानी को कैसे बताता। यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे पैशन में बदलने लगी, और फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मुंबई जाना है, सपनों की नगरी। लेकिन मुंबई हर किसी को रेड कार्पेट वेलकम नहीं देती। यहाँ हजारों लोग रोज आते हैं, हर किसी के पास एक ड्रीम होता है, और इंडस्ट्री का पहला लेसन बहुत सिंपल होता है, टैलेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन पेशेंस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आदित्य धर ने भी वैसा ही फेस देखा। उन्होंने एक्टिंग के पीछे भागने के बजाय राइटिंग पर फोकस किया, कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया, कई आइडियाज लिखे, कई बार रिजेक्शंस भी मिला। और ये वही स्टेज होती है जहां बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रगल ग्लैमरस नहीं होता, स्ट्रगल में कैमरा नहीं होता, क्लैप्स नहीं होती, अवार्ड्स नहीं होते, सिर्फ अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन आदित्य धर लगे रहे इंडस्ट्री में। धीरे धीरे उनकी पहचान एक राइटर के रूप में बनने लगी। उन्होंने सॉन्ग्स लिखे, स्क्रिप्ट्स लिखी, क्रिएटिव डिस्कशंस का हिस्सा बने, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो सीखते रहे हर प्रोजेक्ट से, हर फेलियर से, हर रिजेक्शन से। कई लोग स्ट्रगल को टाइम वेस्ट समझते हैं, लेकिन बाद में जब आप सक्सेसफुल लोगों की कहानी देखते हो तो समझ आता है कि वही स्ट्रगल उनकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग थी। आदित्य धर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके पास एक विजन डेवलप हो रहा था, एक ऐसा विजन जो सिर्फ एक राइटर का नहीं था, एक फ्यूचर डायरेक्टर का था। लेकिन उस वक्त शायद उन्हें भी नहीं पता था कि कुछ सालों बाद वो इंडिया की सबसे इंपैक्टफुल मिलिट्री फिल्म में से एक डायरेक्ट करने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनका नाम तब भी हेडलाइंस में नहीं था। वो शांति से काम कर रहे थे, बिना नॉइस के, बिना पब्लिसिटी के, बिना किसी गारंटी के, क्योंकि उन्हें पता था कभी कभी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को मिलती है जो स्पॉटलाइट के बाहर रहकर भी अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करते रहते हैं। लोग अक्सर सक्सेस को देखते हैं लेकिन सक्सेस के पहले वाले सालों को नहीं। आदित्य धर की कहानी याद दिलाती है कि कभी कभी दुनिया को आपका नाम जानने से पहले आपको खुद पर भरोसा रखना पड़ता है। और ये थी कहानी आदित्य धर की। करेंगे इसके बारे में और भी बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

हर फिल्म मेकर के करियर में एक ऐसा मोमेंट आता है जब उसे डिसाइड करना पड़ता है सेफ खेलना है या वो कहानी बतानी है जिस पर उसे खुद यकीन है। आदित्य धर के लिए भी वो मोमेंट था उरी का। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। आप सुन रहे कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं फिल्म डायरेक्टर आदित्य धर की। कई साल तक इंडस्ट्री में राइटर के रूप में काम करने के बाद आदित्य धर के पास एक्सपीरियंस तो था, लेकिन एक डायरेक्टर के रूप में उनकी पहचान अभी बनी नहीं थी। और बॉलीवुड में पहली फिल्म डायरेक्ट करना आसान नहीं होता। प्रोड्यूस

थे, तब आदित्य धर कहानी के बारे में और सोचने लगे। उन्हें लगा कि इस ऑपरेशन के पीछे सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटजी नहीं है, इंसानी इमोशंस भी है, डर है, प्रेशर है, सेक्रीफाइस है, और सबसे इम्पोर्टेंट उन लोगों की कहानी है जो देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। यहीं से उरी का बीज बोया गया। लेकिन एक आइडिया होना और फिल्म बनाना दोनों अलग चीजें होती हैं। मिलिट्री सब्जेक्ट पर फिल्म बनाना ऑलरेडी रिस्की माना जाता था, और जब डायरेक्टर भी नया हो तो रिस्क और बड़ा लगने लगता है। बहुत लोगों ने सोचा कि क्या ऑडियंस इतनी सीरियस फिल्म देखना चाहेंगे, क्या ये बॉक्स ऑफिस पर चलेगी, क्या ये फर्स्ट टाइम डायरेक्टर इतने बड़े सब्जेक्ट को हैंडल कर पाएगा। ये सवाल सिर्फ इंडस्ट्री के नहीं थे, ये सवाल खुद आदित्य धर के सामने भी खड़े थे। लेकिन उन्होंने एक चीज समझ ली थी, अगर कहानी में सच्चाई हो तो ऑडियंस उससे कनेक्ट करती है। फिर उन्होंने रिसर्च शुरू की, रिपोर्ट्स पढ़ी, मिलिट्री ऑपरेशंस को समझा, आर्म फोर्सेस के काम करने का तरीका समझा, और धीरे धीरे स्क्रिप्ट शेप लेने लगी। लेकिन आदित्य धर एक टिपिकल वॉर फिल्म नहीं बनाना चाहते थे। वो सिर्फ एक्सप्लोजन और गन फाइट्स नहीं दिखाना चाहते थे, वो सोल्जर्स के इमोशन दिखाना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कि यूनिफॉर्म के पीछे भी इंसान होते हैं, जिनके परिवार होते हैं, जिनके डर होते हैं और जिनके सपने होते हैं। और जैसे जैसे स्क्रिप्ट आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ प्रेशर भी बढ़ रहा था, क्योंकि अब ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रही थी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बन चुकी थी। वो प्रोजेक्ट जो उन्हें राइटर से डायरेक्टर बना सकता था, या फिर उनके करियर को बहुत बड़ा झटका भी दे सकता था। और शायद इसी वजह से आदित्य धर ने इस फिल्म पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, टाइम, एनर्जी, क्रिएटिविटी, इमोशन, सब कुछ। उन्हें पता था कि अगर फिल्म ऑडियंस तक वैसे पहुंच गई जैसे वो इमेजिन कर रहे हैं तो उनकी जिंदगी बदल सकती है, और अगर नहीं हुई तो शायद लोग उन्हें फिर से एक राइटर के रूप में याद रखेंगे। लेकिन हर बड़े सपने के साथ एक बड़ा रिस्क आता है, और आदित्य धर ने वो रिस्क लेने का फैसला कर लिया था। दुनिया को उरी एक मिलिट्री फिल्म देखी, लेकिन आदित्य धर के लिए वो एक टेस्ट था, एक ऐसा टेस्ट जिसमें उन्होंने प्रूव करना था कि कभी कभी सबसे बड़े डायरेक्टर्स वही बनते हैं जो सबसे बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। तो ये थी आदित्य धर की उरी फिल्म की कहानी, और आगे कैसे मिले उन्हें नेशनल अवार्ड और कैसी रही उनकी पर्सनल लाइफ, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से।

कुछ लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं और कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं कि सक्सेस खुद उनके दरवाजे तक आ जाती है। उरी के बाद आदित्य धर की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं फिल्म डायरेक्टर आदित्य धर की। साल था 2019, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक रिलीज हो चुकी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। ऑडियंस थिएटर से बाहर निकलते वक्त सिर्फ फिल्म की बात नहीं कर रहे थे, वो उस इमोशन की बात कर रही थी जो फिल्म ने सबके अंदर जगाया था। सोशल मीडिया पर डायलॉग्स वायरल हो रहे थे, हाउस द जोश, हाय सर, ये सबको याद है। और ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं रहा था, ये एक नेशनल कैच फ्रेज बन चुका था। और इस डायलॉग के पीछे जो राइटर डायरेक्टर था उसका नाम अब पूरा देश जाने लगा था। कई साल तक जो इंसान कैमरे के पीछे क्वाइटली काम कर रहा था वही इंसान इंडस्ट्री के सबसे डिस्कस्ड फिल्म मेकर्स में से एक बन गया था। लेकिन असली मूवमेंट अभी आना बाकी था। अगस्त 2019 नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस हुए और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने कई बड़े अवार्ड जीते। सबसे खास था बेस्ट डायरेक्टर नेशनल अवार्ड फॉर आदित्य धर। सोचिए, एक फिल्म मेकर जिसने पहली फीचर फिल्म डायरेक्ट की और उसी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीत लिया। ये सिर्फ अचीवमेंट नहीं थी, ये वैलिडेशन था, उन सारे सालों की वैलिडेशन जब उन्होंने स्ट्रगल किया था, जब उनके आइडियाज रिजेक्ट हुए थे, जब किसी को नहीं पता था कि आदित्य धर कौन है। उस दिन उनकी जर्नी ने एक पावरफुल मैसेज दिया, कभी कभी एक मौका ही काफी होता है, बस उस मौके के लिए सालों तक तैयार रहना पड़ता है। लेकिन इसी दौरान उनकी पर्सनल लाइफ में भी एक बहुत बड़ा चैप्टर लिखा जा रहा था। उरी की शूटिंग के वक्त ही आदित्य धर और एक्ट्रेस यामी गौतम के बीच दोस्ती बढ़नी शुरू हुई थी। दोनों का नेचर काफी सिमिलर माना जाता था, लो प्रोफाइल, प्राइवेट और अपने काम पर फोकस्ड। इंडस्ट्री में जहां रिलेशनशिप अक्सर हेडलाइंस का हिस्सा बन जाती है, वहां इन दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखा। ना पब्लिक ड्रामा, ना कॉन्स्टेंट मीडिया अपीयरेंसेस, ना अननेसेसरी पब्लिसिटी। और शायद इसी वजह से जब जून 2021 में उन्होंने शादी की अनाउंसमेंट की तो बहुत लोग जेन्युइनली सरप्राइज्ड हो गए। सोशल मीडिया पर एक सिंपल सी वेडिंग फोटो आई, नो एक्स्ट्रावेगेंट सेलिब्रिटी इवेंट, नो ओवर द टॉप सेलिब्रेशन, बस एक सिंपल ट्रेडिशनल और एलिगेंट वेडिंग। और लोगों को ये सिंप्लिसिटी बहुत पसंद आई। आदित्य धर का नेशनल अवार्ड जीतना सिर्फ एक एंडिंग नहीं था, वो एक नई बिगनिंग थी, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब लोग उनसे सिर्फ एक अच्छी फिल्म नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिल्म एक्सपेक्ट करने लगे थे। और इंडस्ट्री में सबसे डिफिकल्ट काम होता है अपनी पहली बड़ी सक्सेस के बाद खुद को प्रूव करते रहना। नेशनल अवार्ड ने आदित्य धर को पहचान जरूर दी, लेकिन उनकी असली जीत ये थी कि सालों के स्ट्रगल के बाद भी उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी नहीं खोई। और शायद वही क्वालिटी किसी फिल्म मेकर को सक्सेसफुल से मेमोरेबल बनाती है। तो ये थी आदित्य धर की पर्सनल लाइफ और अवार्ड जीतने की कहानी। और आगे क्या हुआ इसके लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: पड़ोसन हूँ, इसलिए जासूस हूँ।
1: सुनो पम्मी बहन जी।
2: बोलो सिमी बहन जी।
1: तुम्हें पता है गुड्डू की लड़की चुन्नू के लड़के के साथ भाग गई, और ये खबर सबको सबसे पहले मैंने ही बताई थी। और पता है एक दिन स्वीटी के घर चार लड़के आए। हाय, वो तो बाद में पता चला कि वो पेंटर थे। और पता है टिल्लो का पति रोज पीकर आता है, और जब ये बात मैं सबको बताने जाती हूँ तो लोग मेरे को जासूस बताते हैं। ले अब ये भी कोई बात हुई भला।
2: सही कह रहे हो पैंट जी, जो जानकारी रखते हैं ना उनको सब जासूस ही कहते हैं।

0: महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

कुछ डायरेक्टर्स हिट फिल्म्स बनाते हैं और कुछ डायरेक्टर्स ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस ही बदल देते हैं। सवाल ये है, आदित्य धर किस कैटेगरी में आते हैं? स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं फिल्म डायरेक्टर आदित्य धर की। उरी की सक्सेस के बाद आदित्य धर के पास एक चॉइस थी। वो चाहते तो वही फॉर्मूला बार बार रिपीट कर सकते थे, एक और पेट्रियोटिक फिल्म, एक और मिलिट्री ड्रामा और एक और सेफ प्रोजेक्ट। इंडस्ट्री में ऐसा बहुत बार होता है, एक फिल्म हिट हो जाए तो उसी टाइप की 10 और फिल्म बनने लगती है। लेकिन आदित्य धर का चैलेंज कुछ और था। अब उन्हें सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन नहीं करना था, उन्हें प्रूव करना था कि उरी कोई एक्सीडेंट नहीं थी, वो उनका विजन, राइटिंग और डायरेक्शन का रिजल्ट था। और यही हर सक्सेसफुल फिल्म मेकर का असली टेस्ट होता है। पहली हिट फिल्म बनाना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में काम करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। उरी के बाद इंडस्ट्री का नजरिया उनके प्रति बदल चुका था। जो फिल्म मेकर कभी प्रोड्यूसर्स को कन्विंस कर रहा था, अब वही फिल्म मेकर इंडिया के बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर रहा था। और लोगों को एक बात समझ आने लगी थी, आदित्य धर सिर्फ एक्शन डायरेक्ट नहीं करते, वो इमोशंस और स्पेक्टेकल के बीच बैलेंस क्रिएट करते हैं। उरी में लोगों ने सिर्फ वॉर नहीं देखी थी, उन्होंने डिटर्मिनेशन देखी, लीडरशिप देखी, सैक्रिफाइस देखा था, और इसी वजह से फिल्म ऑडियंस के साथ कनेक्ट हुई थी। यही क्वालिटी किसी भी फिल्म मेकर की पहचान बन जाती है। और जब इंडियन सिनेमा ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच रहा है, जब भी उनका कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, ऑडियंस सिर्फ कास्ट नहीं देखती, वो ये देखना चाहती है कि इस बार आदित्य धर क्या नया लेकर आएंगे, क्योंकि उन्होंने एक रेपुटेशन बना ली है डिटेल ओरिएंटेड फिल्म मेकर की। और ऐसे फिल्म मेकर की जो प्रिपरेशन को सीरियसली लेता है, जो रिसर्च करता है, जो अपने सब्जेक्ट्स को रिस्पेक्ट के साथ प्रेजेंट करता है। लेकिन लेगेसी सिर्फ फिल्म से नहीं बनती, लेगेसी इंपैक्ट से बनती है। और उरी के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, बहुत सारे यंग राइटर्स और एस्पायरिंग डायरेक्टर्स को मोटिवेशन मिली। उन्होंने देखा कि एक राइटर भी डायरेक्टर बन सकता है, एक आउटसाइडर भी नेशनल अवार्ड जीत सकता है, और एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बन सकती है। ये इंपैक्ट नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन सिनेमा पर इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि हर जनरेशन को एक कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स चाहिए होते हैं जो नए नए लोगों को इंस्पायर कर सके। और शायद इसीलिए आदित्य धर की लेगेसी भी कंप्लीट नहीं हुई। सच कहें तो उनकी लेगेसी अभी लिखी जा रही है, उनका करियर अभी उस स्टेज पर है जहां लोग उनके नेक्स्ट चैप्टर का इंतजार कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो सक्सेसफुल डायरेक्टर बनकर रहेंगे या उन डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल होंगे जिनके नाम से ही ऑडियंस थिएटर तक पहुंच जाती है। स्टीवन स्पीलबर्ग, क्रिस्टोफर नोलन, राजकुमार हिरानी, ऐसे डायरेक्टर्स जिनकी पहचान उनकी स्टोरी टेलिंग बन जाती है। आदित्य धर के पास अब वो अपॉर्चुनिटी है, और शायद इसी वजह से उनका अगला हर प्रोजेक्ट सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक स्टेटमेंट होगा। आदित्य धर की कहानी हमें एक सिंपल बात याद दिलाती है, हर सपना स्पॉटलाइट में नहीं शुरू होता। कभी कभी एक राइटर के डेस्क पर लिखे गए छोटे से आइडिया से भी हिस्ट्री बन सकती है। एक वक्त था जब इंडस्ट्री उनका नाम नहीं जानती थी, और फिर एक वक्त आया जब पूरा देश उनकी फिल्म का डायलॉग तक रिपीट कर रहा था। ये सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है, ये पेशेंस, बिलीफ और विजन की कहानी है। और अगर उनकी जर्नी ने अब तक कुछ प्रूव किया है, तो वो ये है कि असली लेगेसी एक फिल्म से नहीं बनती, वो हर उस कहानी से बनती है जो लोगों के दिल और यादों में जिंदा रह जाती है। तो ये थी कहानी आदित्य धर की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। हमारा नंबर है 9654896896। फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए और मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आपसे फिर से दोबारा सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, इसलिए गधा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाई इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
2: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।

बात है ना, कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, they become emotion, memories and motivation. अभी जो गाना आपने सुना है See You Again, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी है जो लाइफ में बहुत दूर निकल जाते हैं लेकिन उनकी जर्नी आसान नहीं होती. हेलो हाय, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके. मैं आपके साथ गीत हूँ और शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड. और आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिनके पास शुरुआत में ना कनेक्शंस थे, ना लग्जरी थी और ना पावरफुल इंग्लिश. बस था तो एक सपना और उस सपने के पीछे भागने की हिम्मत. अ स्मॉल टाउन बॉय, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड और फिर अचानक एक ऐसी दुनिया जहां लोग लैंग्वेज से जज करते हैं. इमेजिन बीइंग ब्रिलियंट बट स्टिल फीलिंग लेफ्ट आउट, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं थी. कभी जो लड़का टॉपर हुआ करता था, अब वही लड़का खुद को क्राउड में लॉस्ट फील करने लगा. लेकिन कुछ लोग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, दे चेंज द सिचुएशन इटसेल्फ. उन्होंने खुद कोडिंग सीखी, इंग्लिश सीखी, रिस्क लिया, फेलियर्स देखे और वो रास्ता चुना जिससे लोग अक्सर डरते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप. एक ऐसा फेज भी आया जब फैमिली ने कहा बस करो, कंपनी बंद करो, स्टेबल नौकरी कर लो. और ऑनेस्टली उस वक्त की बात बहुत प्रैक्टिकल थी, बिकॉज एट द एज ऑफ 27 उस इंसान की सैलरी सिर्फ 10,000 थी. इतनी कम के रिश्ते तक आने बंद हो गए थे, बट डेस्टिनी हैड डिफरेंट प्लान्स. आज वही इंसान इंडिया के डिजिटल रेवोल्यूशन का एक बड़ा चेहरा बन चुका है. फ्रॉम मोबाइल रिचार्ज टू मूवी टिकट्स टू ऑनलाइन पेमेंट्स, आज करोड़ों लोग उसकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, शायद बिना ये जाने कि उसके पीछे की कहानी कितनी ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है. तो आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे सक्सेस की नहीं, सक्सेस के पीछे वाले अकेलेपन की, प्रेशर की, फेलियर्स की और उस हंगर की जो एक नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है. लेकिन अभी नाम रिवील नहीं करूंगी, बिकॉज अगले लिंक में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ उस बिजनेसमैन से जिसने सिर्फ कंपनी नहीं बनाई बल्कि इंडिया की पेमेंट हैबिट बदल दी. स्टे ट्यून्ड, दिस इज बिजनेस अनप्लग्ड विद

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत हूँ। अभी तक हम उस इंसान की बात कर रहे थे जिसकी स्टोरी छोटे शहर से शुरू होकर बिलियन डॉलर सक्सेस तक पहुँची। अब टाइम है नाम रिवील करने का, बट ऑनेस्टली ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। द मैन वी आर टॉकिंग अबाउट इज विजय शेखर शर्मा, यस द फाउंडर ऑफ पेटीएम। अगर आज इंडिया में कोई चाय वाले से लेकर शॉपिंग मॉल तक QR कोड स्कैन कर रहा है तो रेवोल्यूशन के पीछे कहीं ना कहीं विजय शेखर शर्मा का विजन खड़ा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, उन्होंने शुरुआत बिलियनेयर बनकर नहीं की थी। He was just a small town boy from उत्तर प्रदेश, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, टीचर फादर, सिंपल फैमिली, और शायद इसी वजह से उनकी स्टोरी इतनी रिलेटेबल लगती है क्योंकि कहानी प्रिविलेज की नहीं है, ये कहानी हसल की है। A boy who once struggled to even speak English, आज इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ बिलियन डॉलर मीटिंग करता है। A man जिसे कभी 10,000 सैलरी पर लोग सेटल हो जाओ बोलते थे, आज उसे इंसान की कंपनी ने इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट IPO लॉन्च किया। बट ट्रस्ट मी, सक्सेस सुनने में जितनी ग्लैमरस लगती है ना दोस्त, उतनी होती नहीं है। बिहाइंड एवरी बिग कंपनी देयर इज अ फेज ऑफ लोनलीनेस, कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट एंड साइलेंट सेक्रीफाइसेस। विजय शेखर शर्मा की जर्नी में भी वो फेज आया था जब उन्हें लगा शायद वो पीछे रह गए हैं, जब फैमिली को समझ नहीं आता है कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। एंड समवेयर दैट्स द मोस्ट ह्यूमन पार्ट ऑफ हिज स्टोरी, क्योंकि जब आपके ड्रीम्स लोगों को समझ नहीं आते हैं तब सबसे मुश्किल होता है खुद पर बिलीव करते रहना। लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने सिर्फ बिजनेस बिल्ड नहीं किया, उन्होंने इंडिया की हैबिट बदल दी। रिचार्ज ऐप से शुरू हुई जर्नी आज बैंकिंग, टिकट्स, इंश्योरेंस, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग सब तक पहुंच चुकी है। और सबसे इमोशनल बात, एक दिन उनकी माँ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उन्होंने उनसे पूछा, सच में तुम्हारे पास इतना पैसा है? इमेजिन दैट मोमेंट, जब एक मिडिल क्लास मदर को खुद यकीन ना हो कि उनका बेटा इतना बड़ा नाम कमा चुका है। लेकिन दोस्तों, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक बच्चा होता है जिसने कभी क्वाइटली स्ट्रगल किया होता है। तो अब मैं बात करूंगी उसी स्ट्रगल के बारे में, उनके चाइल्डहुड, उनकी एडुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, कि कैसे एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट ने अपने ड्रीम्स को लिमिटेशन नहीं बनने दिया। तो स्टे ट्यून, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड।

0: साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: आज है साइबर सिक्योरिटी एंड रोड सिक्योरिटी का तंदूरी तड़का, जो आप सबके फोन से लोकेशन, कॉन्टैक्ट, फोटो, सबने हमेशा सब मांगे उन्हें बाय बाय बोलकर विदाई दे दो, और ईमेल्स लाइक क्लिक टू विन प्राइज और अकाउंट इज इन डेंजर या पार्सल इज अराइविंग, अरे मेरे भाई मैंने मैथ्स की किताब तक नहीं मंगाई, कौन सा पार्सल ला रहा है।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। आज तक आपने विजय शेखर शर्मा को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तरह देखा होगा, बट एवरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वाज वंस जस्ट अ किड विद कंफ्यूजन, फियर एंड ड्रीम्स। सो लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। विजय शेखर शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुआ, अ वेरी सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। उनके फादर एक स्कूल टीचर थे, एडोलेसेंट डिसिप्लिन्ड और एक्स्ट्रा इनकम के लिए ट्यूशन भी पढ़ाते थे। मदर वॉज अ होम मेकर, सिंपल फैमिली वैल्यूज, सिंपल लाइफ स्टाइल। लेकिन ड्रीम्स छोटे नहीं थे। अब इमेजिन कीजिए कि सिर्फ 14 साल की उम्र और कोई बच्चा 12th पास कर ले, साउंड्स अनबिलीवेबल ना? लेकिन विजय शेखर शर्मा ने यही किया। ही वॉज ब्रिलियंट इन स्टडीज, स्कूल टॉपर, शार्प माइंड, और शायद इसी वजह से इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। और यही से उनकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्न आया, बिकॉज टैलेंट होने के बावजूद उन्होंने खुद को अकेला फील करना शुरू कर दिया। रीजन, इंग्लिश। उन्होंने पूरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से की थी और सडनली वो एक ऐसे एनवायरमेंट तक पहुंच गए थे जहां हर कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था। क्लासेस इंग्लिश में, बुक इंग्लिश में, कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में, और एक लड़का जो इंटेलिजेंट था लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से खुद को पीछे महसूस करने लगा था। उन्होंने खुद कहा था कि एक ऐसा टाइम आया जब वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि कॉलेज जाना तक बंद कर दिया था। इमेजिन द प्रेशर, जब आप कैपेबल हो लेकिन खुद को एक्सप्रेस न कर पाओ। बट दिस इज द पार्ट आई पर्सनली लव अबाउट हिज स्टोरी। उन्होंने हार नहीं मानी। He started learning English on his own. पुरानी मैगजीन्स पढ़ी, बुक्स पढ़ी, फ्रेंड्स की हेल्प ली और एक ही किताब का हिंदी और इंग्लिश वर्जन साथ में पढ़ते थे, जस्ट टू अंडरस्टैंड वर्ड्स बेटर। और शायद यही डिफरेंस होता है ड्रीमर और अचीवर में। ड्रीमर सिर्फ सोचते हैं, अचीवर्स अनकंफर्टेबल होकर भी सीखते हैं। लेकिन कॉलेज के दौरान ही उनका फोकस सिर्फ डिग्री पर नहीं रहा, उन्होंने कोडिंग सीखनी शुरू की, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। While others were looking for jobs, he was trying to build something for his own. उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जिसे कुछ बड़े न्यूज पब्लिकेशंस ने यूज करना भी शुरू कर दिया। एंड यस, उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब शुरू की, लेकिन सिर्फ 6 महीने, बिकॉज समवेयर द एंटरप्रेन्योर इनसाइड हिम वाज टू रेस्टलेस फॉर अ रेगुलर लाइफ। उन्होंने जॉब छोड़ दी और दोस्तों के साथ अपनी कंपनी शुरू कर दी। अब बॉस, यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि डेंजरस होने लगती है, बिकॉज ड्रीम शुरू हो चुका था लेकिन सक्सेस अभी बहुत दूर थी। तो अब मैं बात करूंगी उसी स्ट्रगल के बारे में जब बिजनेस चल नहीं रहा था, सैलरी सिर्फ 10,000 थी, फैमिली प्रेशर बढ़ रहा था, और कैसे इन्होंने अपनी फर्स्ट रियल टीम बनाई। सो स्टे ट्यून्ड, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो।

गाना है फ्रॉम द मूवी धुरंधर और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो है बिजनेस अनप्लग्ड में, आपके साथ गीत हूँ। अब तक हमने जाना कैसे विजय शेखर शर्मा एक स्मॉल टाउन हिंदी मीडियम स्टूडेंट से एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी पर निकले, लेकिन ऑनेस्टली ड्रीम शुरू करना आसान होता है, उसे सर्वाइव कराना सबसे मुश्किल। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप लुक्स एक्साइटिंग ऑन इंस्टाग्राम बट इन रियल लाइफ इट कैन ब्रेक यू मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली। विजय शेखर शर्मा के साथ भी यही हुआ, इन्होंने जॉब छोड़ दी, अपने दोस्तों के साथ कंपनी शुरू की, आइडियाज थे, पैशन था, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं थी और मिडिल क्लास फैमिलीज में सबसे बड़ा प्रेशर पता क्या होता है, स्टेबल हो जाओ यार। उनके फादर भी यही कहा करते थे, कंपनी बंद करो, नौकरी कर लो, अगर 30,000 भी मिल रहे हैं तो बहुत है। और एक सच बात बताऊं, पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते, वो बस हमें स्ट्रगल में टूटते हुए नहीं देख सकते। और मैंने कहीं जाकिर की वो एक लाइन सुनी थी कि माँ बाप हमारे पैशन से नहीं जलते, वो बस इस बात से दुखी होते हैं कि कहीं हम गरीब ना रहें। लेकिन उस टाइम विजय शेखर शर्मा एक ऐसे फेज में थे जहां ड्रीम्स और रियलिटी दोनों लड़ रहे थे, एक तरफ थे एम्बिशन और दूसरी तरफ बिल्स। उन्होंने खुद बताया था कि एक ऐसा टाइम भी आया जब उनकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए थी। कैन यू इमेजिन बिल्डिंग बिग ड्रीम्स विद ऑलमोस्ट नो मनी, इतने कम इनकम के रिश्ते तक आने बंद हो गए। इन्होंने खुद को इन एलिजिबल बैचलर तक कह दिया। दैट लाइन साउंड्स फनी मे बी बट समवेयर इट्स पेनफुल टू, क्योंकि सोसाइटी सक्सेस को नहीं रिजल्ट को रिस्पेक्ट करती है। जब तक स्ट्रगल चल रहा होता है लोग आपको कंफ्यूज्ड समझते हैं, लेकिन इसी फेज में इन्होंने हार नहीं मानी। इंस्टेड ऑफ क्विट इन्होंने सीखा कंटिन्यू रखना। कोडिंग, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मोबाइल इको सिस्टम, वो फ्यूचर को समझ रहे थे जब बाकी लोग प्रेजेंट में स्टक थे। और यहीं से धीरे धीरे उनकी टीम बननी शुरू हुई, नॉट अ बिग कॉर्पोरेट टीम, बस कुछ लोग जो आइडियाज पर बिलीव करते थे। कई बार ऑफिस छोटा था, रिसोर्सेस कम थे, लेकिन विजन बड़ा था। और बिजनेस में सबसे पावरफुल चीज फंडिंग नहीं होती, बिलीफ होता है। जब कुछ लोग आपके ड्रीम पर ट्रस्ट करते हैं ना, वहीं से एम्पायर बनना शुरू हो जाता है। इन्होंने पहले कई एक्सपेरिमेंट किए, कई प्रोडक्ट्स चले नहीं, फेलियर्स आए, लेकिन इन्होंने इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी की पावर को बहुत पहले पहचान लिया था। एंड देन एक आइडिया आया जिसने सब कुछ चेंज कर दिया, अ सिंपल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसे आज दुनिया पेटीएम के नाम से जानती है। लेकिन पेटीएम ओवरनाइट सक्सेस नहीं था, उसके पीछे स्लीपलेस नाइट्स थी, टीम प्रेशर था, फाइनेंशियल रिस्क था, और वो फियर भी था कि अगर ये नहीं चला तो क्या होगा। लेकिन कभी कभी लाइफ उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करती है जो अनसर्टेनिटी में भी खुद पर बेट लगाते हैं। और मैं बात करने वाली हूँ थोड़ी देर बाद उस मैसिव सक्सेस की, कंपनी का टर्नओवर, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, इंडियाज बिगेस्ट आईपीओ, और आज प्रेजेंट टाइम में पेटीएम कहाँ खड़ा है अब सबको मालूम है। सो स्टे ट्यून्ड, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड विद आरजे गीत।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: yes, yes. Say it again.
1: वेलकम बैक अगेन. यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड एंड मैं आपके साथ गीत हूँ. और आज की जर्नी अब तक पहुंच चुकी है उस पॉइंट पर जहां स्ट्रगल कहानी नहीं रहती बल्कि हिस्ट्री बन जाती है. विजय शेखर शर्मा एक ऐसा नाम जिसे आज इंडिया सिर्फ बिजनेसमैन नहीं डिजिटल रेवोल्यूशन के फेस की तरह जानती है. लेकिन सोचिए, जिस इंसान को कभी इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होती थी, जिसकी सैलरी सिर्फ 10,000 थी, जिसे लोग स्टेबल हो जाओ बोलते थे, आज उसी इंसान की कंपनी करोड़ों इंडियंस की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है. पेटीएम ने शुरुआत सिर्फ मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म के तौर पर की थी, बट देन एवरीथिंग चेंज्ड. धीरे धीरे लोगों ने बिल्स पे करने शुरू कर दिए. मूवी टिकट्स, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन टिकट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, यूपीआई पेमेंट्स. और देखते ही देखते पेटीएम सिर्फ ऐप नहीं रहा बल्कि हैबिट बन गया. आज इंडिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने कभी ना कभी पेटीएम यूज ना किया हो. एंड देन केम द मोमेंट जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी. पेटीएम लॉन्च्ड वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट आईपीओज, 18,300 करोड़ रुपीज. जस्ट इमेजिन दैट नंबर. एक सिंपल से लड़के का सपना पूरे स्टॉक मार्केट की हेडलाइन बन चुका था. ग्लोबल इन्वेस्टर्स लाइक सॉफ्ट बैंक, बर्कशायर हैथवे एंड एंट ग्रुप सबने इस विजन पर ट्रस्ट किया. 2017 में विजय शेखर शर्मा इंडिया के यंगेस्ट बिलियनर्स में शामिल हो गए. लेकिन सक्सेस का सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था? जब उनकी मदर ने न्यूज़पेपर पढ़कर पूछा, सच में तुम्हारे पास इतना पैसा है क्या बेटा? एंड ऑनेस्टली उस मोमेंट में शायद पूरी जर्नी छुपी हुई है. अ मदर हु वंस सॉ हर सन स्ट्रगलिंग साइलेंटली, अब उसी बेटे को दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी. लेकिन स्टोरी यहाँ सिर्फ पैसे की नहीं थी, ये स्टोरी है बिलीव की. बिकॉज विजय शेखर शर्मा ने हमें एक चीज सिखाई है, लैंग्वेज बैरियर परमानेंट नहीं होता, स्मॉल टाउन वीकनेस नहीं होता, मिडिल क्लास बैकग्राउंड लिमिटेशन नहीं होता. अगर कुछ पावरफुल होता है तो वो होता है विजन. और शायद इसीलिए हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पहले मिसअंडरस्टूड होता है. आज जब लोग क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, दे सी कन्वीनियंस, लेकिन इसके पीछे किसी की स्लीपलेस नाइट्स, फेलियर्स, लोनलीनेस और इयर्स ऑफ हसल छुपे होते हैं. और यही वजह है कि आज की स्टोरी सिर्फ बिजनेस स्टोरी नहीं थी, इट वॉज अ रिमाइंडर कि ड्रीम्स का कोई एक्सेंट नहीं होता. तो अगर आप भी अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि रिसोर्सेस कम है, इंग्लिश वीक है, सपोर्ट नहीं है, देन रिमेम्बर दिस स्टोरी. बिकॉज समटाइम्स द बॉय एवरीवन डाउट्स बिकम द मैन हिस्ट्री रिमेम्बर्स. मैं हूँ गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर इंस्पायरिंग स्टोरी, अनदर अनस्टॉपेबल जर्नी. टिल देन कीप ड्रीमिंग, कीप बिल्डिंग एंड नेवर अंडर एस्टिमेट योर बिगनिंग. सो सुनते रहे रेडियो महारानी 99.6 FM, कुछ हटके.

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जी।

क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है गर्मियों में कि फ्रिज का पानी पिया हो पर फिर भी दिल को सुकून ना मिला हो, और फिर किसी ने एक मिट्टी के मटके से स्टील के ग्लास में पानी दिया हो, ना तो आइस ना कूलिंग बटन, फिर भी पहला घूट ही सीधा रूह तक उतर गया हो। वो कहा है कि जो सुकून मिट्टी की ठंडक में होता है वो शीशे की ठंडी बॉटल्स में कहा। और इसी के साथ रेडियो महारानी 89.6 FM पर मैं हूँ आपकी दोस्त आज अंजलि, और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज बात होगी एक ऐसी चीज की जो सिंपल भी है, साइंटिफिक भी और इमोशनल भी, यानी मटका। बात करें मट्टी की तो आइए पहले ये जानते हैं आखिर कितना पुराना है ये मटका। कोई मॉडर्न इनोवेशन नहीं, इंडिया में हजारों सालों से मिट्टी के बर्तन यूज होते हुए आए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सकेवेशन में भी मिट्टी के पॉट्स और वाटर वेसल्स मिले हैं। अब सोचिए जरा, जब ना फ्रिज था ना इलेक्ट्रिसिटी, तब ये सारी चीजें आखिर आई कहां से? तब इंसान ने मिट्टी में ही कूलिंग सिस्टम ढूंढ लिया। वो कहते हैं ना, नेचर के सबसे बड़े इनोवेशंस अक्सर नेचर से ही आता है। और इसी के साथ वापस आकर जानेंगे आखिर मटका पानी ठंडा कैसे करता है। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

का मिट्टी का बना होता है और मिट्टी में होते हैं छोटे छोटे पोर्स। उन छोटे छोटे होल से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आता है और बस धीरे धीरे हवा के कॉन्टेक्ट में इवोपरेट होता है, और बस इस इवोपरेशन प्रोसेस की वजह से अंदर का पानी नेचुरल कूल हो जाता है। मतलब मटका इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, नेचर के साइंस से चलता है। वो कहा है कि जो चीज़ें कुदरत के करीब होती हैं वो अक्सर सेहत के भी करीब होती हैं, और इसीलिए गर्मियों का असली हीरो कहा जाता है मटके को। एक टाइम हुआ करता था जब हर घर के कोने में मटका होता था, उसके नीचे छोटा सा स्टैंड, ऊपर एक स्टील का ग्लास, और बार बार मम्मी की आवाज, फ्रिज का नहीं मटके का पानी पियो, क्योंकि मटके का पानी सिर्फ ठंडा नहीं होता, सॉफ्ट और अर्थी भी होता है। जैसे उसमें मिट्टी की खुशबू खुल गई है। और मिट्टी के पीछे का ना एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन है, वो है कुमार और मिट्टी का रिश्ता। इस कनेक्शन के बारे में भी जानेंगे, लेकिन वापस आकर, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
3: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
2: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे एनजी और आज हम बात कर रहे हैं मिट्टी के बारे में, जहां सबसे खास रिश्ता है कुम्हार और मिट्टी का रिश्ता। मटका सिर्फ एक वेसल नहीं, एक आर्ट है और इस आर्ट के पीछे होते हैं आर्टिस्ट, जिन्हें कहते हैं कुम्हार। वो लोग जो मिट्टी को शेप देकर रोजमर्रा की जिंदगी में सुकून भर देते हैं। एक सिंपल सा मटका बनाने के लिए भी मिट्टी चुनना, उसे गूंदना, चाक पर शेप देना और धूप में सुखाना पड़ता है। कहते हैं कुछ लोग मिट्टी से सिर्फ बर्तन नहीं, कल्चर बनाते हैं और इसलिए मटका और इंडिया कल्चर बहुत पुराना है। इंडिया में मटका सिर्फ पानी रखने के लिए नहीं था, सर्दियों में फेस्टिवल्स में और रिलीजियस रिचुअल्स में भी मटके का स्पेशल इम्पोर्टेंस रहा है। कई जगह तो मटका प्रॉस्पेरिटी और लाइफ का सिंबल माना जाता है, क्योंकि पानी और मिट्टी दोनों ही जीवन के बेस हैं। वो कहा है कि जिस मिट्टी से हम बने हैं, शायद सुकून भी उसी में छुपा होता है। अब वापस आकर जानेंगे फ्रिज वर्सेस मटके की जंग। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं मटके के बारे में। तो चलिए फिर जानते हैं फ्रिज वर्सेस मटका। अगर बात करें फ्रिज की तो फ्रिज आज हर घर में है, पर फिर भी समर आते ही लोग मटका खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिज पानी को आइस कूल करता है पर मटका उसे जीता हुआ रखता है। मटके का पानी न ज्यादा ठंडा न शॉक देने वाला, बस परफेक्ट। और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर बॉडी के लिए आइडियल नहीं होता। और यही रीजन है मटका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं, समर मेमोरीज है। दोपहर की गर्मी, कूलर की आवाज, आंगन और मटके के पास रखा ग्लास। कभी कभी लगता है पुरानी गर्मियां ज्यादा खूबसूरत थी, शायद इसलिए क्योंकि तब चीजें नेचुरल थी और वक्त भी थोड़ा धीरे चलता था। वो कहा है कि पुरानी गर्मियों में एसी कम थे पर सुकून ज्यादा था। मटका हमें एक सिंपल सी बात सिखाता है कि सिंपलिसिटी कभी आउटडेटेड नहीं होती और कुछ चीजें टेक्नोलॉजी से नहीं ट्रेडिशन से बेटर चलती हैं। वो कहा है कि ना बैटरी चाहिए ना बटन का सहारा। मिट्टी का मटका आज भी गर्मी को हरा देता है। जो जुड़ा हो जमीन से वही असली सुकून देता है। अगली बार गर्मी लगे तो एक ग्लास मटके का पानी जरूर पीना। हो सकता है ठंडक सिर्फ गले तक नहीं, यादों तक पहुंच जाए। और इसी के साथ अब मेरा वक्त हो गया है यहाँ से जाने का। कल फिर से मिलेंगे एक और सिंपल सी चीज में छुपी एक बड़ी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
4: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
3: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: क्या आप लोगों को मालूम है अभी इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट मैच भी चल रहा था और वो खत्म भी हो चुका है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे शॉक में आ गया। आई वाज लाइक कि ये मैच कब हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हो गया। सब चीजों के बारे में करेंगे बात। लो जी, मैं आ गया हूँ आप सभी के साथ मंडे ब्लूज को दूर करने के लिए। मंडे की शाम है, गौरव मेरा नाम है, आप सभी के साथ आ गया हूँ। तो गाने चलाने वाला हूँ अभी, बस गाने चलाता हूँ, बस मैं यूं गया यूं आया आप सभी के लिए करण औजला की आवाज में ये गाना।
5: इस पंजाब

0: कभी पॉप कल्चर।
1: आज पृथ्वी से टकराएगा सूरज का तूफान, सौर तूफान कहते हैं इसे, और शायद टकरा भी चुका है और ऑरोरा लाइट्स भी देखने को मिल सकती है। क्या होती है ऑरोरा लाइट्स? सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। शाम हो गई है, घर के सिलेंडर महंगे हो गए हैं और साथ ही साथ सुपर एलनीनो फिर से एक्टिव हो गया है, इसे गॉडजिला एलनीनो कह रहे हैं। मॉनसून भी आने वाला है, कब आने वाला है, तो ये सारी बातें मैं आप सभी को बताऊंगा, मगर अगले 3 घंटे के भीतर मीन्स इसी के बीच में आप सभी के साथ बहुत सारी बातें शेयर करने वाला हूं। और हाँ, एक और बात मैं अभी बोलना चाहूंगा आप सभी से कि आप लोग कभी भी घूमने जा रहे हो तो किसी ऐसी जगह पर घूमने जाओ जहां पर आपको सुकून मिले, ऐसी जगह नहीं जहां पर बहुत सारी भीड़ मिले। तो देखो, अब मेरा शो शुरू हो चुका है, अगले 3 घंटों के लिए मैं आप सभी के साथ जुड़ गया हूँ। खूब सारी बातें होंगी, खूब सारी मस्ती होगी, खूब सारे गाने चलेंगे, दिल्ली से लेकर फरीदाबाद तक ऑल ओवर इंडिया की सारी बातें आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो अगर इसी बीच आप लोगों को मुझसे बातें करनी है तो नंबर है जी मेरा 9654896896। और कभी आप लोगों ने सोचा कि एक डिलीवरी बॉय की अर्निंग कितनी होगी? नहीं नहीं, काफ़ी बार ख्याल आता ना उनमें कि इनकी अर्निंग कितनी हो जाती होगी, तो वो सब चीज़ें भी मैं आप सभी के साथ बताऊंगा, सब चीज़ें करेंगे शेयर। और इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच में हुआ क्या, करेंगे उसके बारे में भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। तो ये था ऑल टोटल प्री कैप कि क्या क्या होने वाले मेरे शो में, और उसी के बीच बहुत सारे गाने चलेंगे। तो फरीदाबाद वालों, आप सभी के बीच में से निकला हुआ एक लड़का जो कि रैपर बन गया और उसी की आवाज में गाना चल रहा है, बैकग्राउंड में म्यूजिक जो बज रहा है उसकी वॉल्यूम थोड़ी सी लाउड कर दूंगा आप सभी के लिए एमसी स्क्वायर की आवाज में लाडो, ओनली ऑन 89.6 FM रेडियो महारानी, कुछ हटके लाडो।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
2: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इरशाद।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
3: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे तो
0: Ladies and gentlemen, you are not ready for-

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
4: सुन भाई सुरेंद्र।
5: हाँ भाई सुरेंद्र।
4: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
5: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

जिस तरह से आपके ऑफिस में बॉस का चमचा और आप टकरा जाते हो ना, उसी तरह से सूरज का तूफान जो है वो पृथ्वी से टकराने वाला है। पुष्टि की गई थी कि आज टकरा जाएगा और शायद टकरा भी चुका होगा, जिसकी वजह से ऑरोरा लाइट्स देखने को भी मिल सकती है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। मुझे पता है आप लोग भी इस टाइम ऑफिस से निकले होंगे या फिर हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होंगे, मगर जो भी मैं बात बताने जा रहा हूं ना, इसको सुन के आप लोग भी बोलोगे कि हाँ, आज इंडिया में भी आप लोगों को ऑरोरा देखने को मिलेगा, संभावना है। और बता दूँ ऑरोरा होता क्या है, ग्रीन ग्रीन कलर की लाइट्स नहीं होती आसमान में चमक रही होती है, बहुत दूर दूर तक दिखाई देती है। तो ऐसी वाली लाइट्स आज रात को

गया है और इसकी वजह से गर्मी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है आप लोगों को। और इसके साथ साथ गॉडज़िला एल नीनो भी आने वाला है। क्या है गॉडज़िला एल नीनो, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

आज गर्मी देखने को मिली आप लोगों को? मतलब देखने तो खैर महसूस करने को मिली होगी, बहुत ज्यादा दिन में गर्मी बहुत ही ज्यादा थी आज। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और सोलर तूफान यानी कि सूरज से निकला हुआ तूफान एक पृथ्वी से आज टकराया है। इसके अलावा सुपर एल नीनो कह रहा था ना मैं बहुत दिनों से, मगर इस बार कह रहे गॉडज़िला एल नीनो आ रहा है। गॉडज़िला एल नीनो क्या होता है बताता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, प्रशांत महासागर हम सभी को पता है पैसिफिक ओशन, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक जितना भी एल नीनो होता है ना, एल नीनो में होता क्या, देखो पानी की जो सतह है वो, जो समुद्र है उसकी जो सतह है वो थोड़ी सी ना टेम्परेचर बढ़ जाता है 2 से 3 डिग्री, तो इस बार 2.5 डिग्री से ऊपर बढ़ गया है। और कहा जा रहा है कि इस बार गर्मी प्रचंड वाली पड़ेगी, जो कि हम लोग देख ही रहे हैं। वो तो भला हो इंद्रदेव जी का कि वो हर हफ्ते एक बार बौछार कर दे रहे हैं, नहीं तो अब तक बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती इंडिया की, क्योंकि पैसिफिक ओशन से जितनी भी विंड्स चलती है वो सीधे के सीधे इंडिया की तरफ ट्रैवल करती है और नॉर्थ एरिया में सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है, नॉर्थ और मिड इंडिया में। वैसे भी साउथ में तो आप सभी को पता है वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि पानी वाला एरिया है और कोस्टल एरिया है बेसिकली, तो इस वजह से वहाँ पर ह्यूमिडिटी रहती है। बट अभी मैं बोलना चाहूँगा कि गर्मी से जल्दी से राहत मिल जाए तो ही अच्छा है। और वैसे भी मॉनसून आने वाला है, कब आने वाला है करेंगे इसके बारे

0: संसार का।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटा भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।
2: Oh, son!

आप सभी को याद होगा कि अभी जो वीकेंड गया है, वीकेंड से एक दो दिन पहले हल्की फुल्की बौछार हो गई थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर ठीक ठाक हो गया था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड वंडा आप सभी के साथ। एंड एक सवाल सबके मन में रहता है गर्मी को देखकर, और वो ये कि बारिश कब होगी। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बारिश नहीं पसंद, उनको इसलिए नहीं पसंद होती, वो कहते हैं यार कीचड़ कीचड़ हो जाता है। नो डाउट कीचड़ होता है, टेम्परेचर में तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है। खैर, जो मैं अभी बात करना चाहता हूँ वो ये है कि मॉनसून आने वाला है और 4 जून को केरल में एंट्री लेने के बाद अब बोला जा रहा है कि आने वाले 20 दिनों में मतलब मॉनसून आ जाएगा। 25 से 30 जून के बीच दिल्ली NCR में एंट्री मार सकता है। नॉक नॉक तो नहीं करेगा, मगर हाँ प्री मॉनसून शार से आप लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ मॉनसून आने वाला है। फिर उसके बाद जैसे ही मॉनसून आएगा तो फिर इस गर्मी से राहत भी लेकर आएगा। और गर्मी की अगर बात करें तो गर्मी अभी कुछ दिन तो यूं ही चलने वाली है मेरे दोस्त, तो गर्मी के से बच के रहिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते रहिए, क्योंकि रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए अच्छे अच्छे गाने चलाऊंगा। और एक पुराना वाला रेट्रो वाला गाना आप सभी के लिए किशोर कुमार की आवाज़ में, सुनिए इस गाने को। मेरी भीगी भीगी सी, अच्छा मेरी आवाज़ में अच्छा नहीं लगेगा, सुनिए ओरिजिनल आवाज़ में।

0: गर्लफ्रेंड हूँ इसलिए कलेशी हूँ। यार निया सुन।
1: हाँ सिया बोल।
0: यार मैंने पूछा कैसे हो, उसने बोला बढ़िया, ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, और जब मिलने के लिए बोलो तो कहता है टाइम नहीं है, और दोस्तों के साथ घूमने के लिए टाइम ही टाइम है। जिस लड़की को जानता तक नहीं है उसकी फोटो पे भी लाइक कर देता है, और जब पूछो तो बोलता है बेबी बस फ्रेंड है, और पता है रील्स पे रिप्लाई ना करके रिएक्ट करके छोड़ देता है, और जब मैं कंप्लेंट करूं तो मुझे कलेशी कह देता है।
1: सही कह रही है, सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कलेशी कहते हैं।

दुख का आलम कुछ ऐसा है कि जेब में नहीं है पैसे, सैलरी आते ही निकल जाएगी मुझे अच्छे से पता है, और इसी के साथ साथ दोस्त तो निकले पड़े हैं घूमने के लिए। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड मैं जो बात बोल रहा हूँ आप सभी से ताल्लुक तो रखते ही होंगे। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के भी दोस्त घूमने गए हुए हैं, सब घूमने गए हुए हैं हमें छोड़कर। हम लोग बस अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसके अलावा कहीं घूमने जा ही नहीं पा रहे हैं। और अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सब के फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई इंसान ऐसा है जो पहाड़ों से वीडियो बना के अपने स्टेटस पे लगा रहा है। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी दीदी, मेरी सिस्टर, जो भी आप लोग घूमने गए हुए हो, आप लोग घूमिए, एंजॉय कीजिए, वीडियोज़ बनाइए, अभी मत डालिए क्योंकि अभी मैं नहीं गया हूँ ना इसलिए तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा। और इनफैक्ट कुछ वीडियोज़ ऐसी आ रही है जहाँ पर पहाड़ पे बहुत लंबा लंबा ट्रैफिक लग रहा है, मतलब नैनीताल की तरफ जा रहे हैं जो लोग, वो कह रहे हैं हम लोग 6 से 7 घंटे में, सिर्फ और सिर्फ 6-7 घंटे में 8 से 10 किलोमीटर ट्रैवल कर पाए हैं। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मनाली गए थे मगर 10 किलोमीटर लंबे जाम में फंस गए थे। तो जाम हर जगह इक्वल हो रहा है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी लिसनर मुझे सुन रहे हैं, अगर आपने कोई प्लान कर रखा है कहीं घूमने जाने का, तो एक बार फिर से सोचिएगा घूमने जाने से पहले कि क्या आप लोग टाइम पे पहुंच पाओगे, क्या आप लोग अच्छे से घूम पाओगे। और हाँ, इसी के साथ साथ घूमने की जगह वो होती है जहाँ पर सुकून होता है। ये नहीं कि सब लोग जा रहे हैं तो हमें भी जाना ज़रूरी है। करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ इसलिए गधा हूँ।
4: सुन भाई सुरेंद्र।
5: हाँ भाई सुरेंद्र।
4: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाई इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
5: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, मैं तो सुन के जाओ। हेलो।

यू नो वॉट पितृ इज, लाइक हम लोग बोलते हैं ना हमारे पितरों की जगह है, तो पितृ मीन्स पूर्वजों की जगह है। और ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर एक पुजारी कह रहे हैं कि आप लोग पूजा करने आ रहे हो तुंगनाथ मंदिर में, जो कि बहुत अच्छी बात है, मगर आप तुंगनाथ से चंद्रशिला जा रहे हो तो वो बहुत ही ज्यादा गलत है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड जो मैं अभी बात बोल रहा हूं वो ये है कि तुंगनाथ मंदिर सब लोग जा रहे हैं, मगर तुंगनाथ से ऊपर चंद्रशिला धाम की जो जगह है वहाँ की एक पुजारी की वीडियो वायरल हुई है, और पुजारी कह रहे हैं कि हमारे पितरों की जगह है, हम लोग खुद वहाँ नंगे पैर जाते हैं और सिर्फ पूजा के लिए ही हम लोग जाते आए हैं बचपन से, मगर अब आजकल लोगों ने उसको पर्यटन स्थल बना दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। आप ये बात मानो या मत मानो, पर्यटन अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, और इसको लेकर सोशल मीडिया पर तो एक तरह से मतलब वॉर शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं फिर ऐसी जगह बनाई क्यों रखी है। अरे नहीं बनाई किसी ने, ये नेचुरली वहीं पर थी और गांव वाले पहले से पूजा करते हुए आए थे सोशल मीडिया से बहुत पहले, मगर आज के लोगों को क्या है कि सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है वही बिक रहा है, हम भी जाएंगे वो गए हैं, तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए यार, क्योंकि जो पहाड़ हैं जो नेचर है उसको हम लोग, हम इंसान लोग डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं एक मैं चले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, सोचिए हजारों लोग लाखों लोग यही सोच रहे हैं कि मेरे अकेले के जाने से क्या हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिए, क्योंकि वो जो जगह है ना उसकी गरिमा और पवित्रता बना के रखनी पड़ेगी, और उसकी गरिमा और पवित्रता को समझना भी पड़ेगा। तो चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, उन्हीं में से ये गाना 89.6 रेडियो महारानी पर।

0: चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुने

अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं घूमने फिरने की बातें कर रहा था, तो इतने में एक इंसान की वीडियो सामने आ गई। जो इंसान गया था घूमने के लिए मुंबई में, और मुंबई में जब वो घूमने गया तो उसने खाए पराठे, मगर बिल आ गया बहुत लंबा चौड़ा। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और फरीदाबाद वालों, फरीदाबाद में पराठे कितने रुपए के मिल जाते हैं? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, मतलब 100 से ऊपर कितने के मिल जाएंगे? मैक्सिमम 150 रुपए के, उससे ज़्यादा महंगे तो मिलते नहीं हैं। मगर क्या हो अगर मैं आपको बोलूँ कि एक लग्जरी होटल है मुंबई में, वहाँ पर पराठे 1100 रुपए के हैं। और ये कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। एक लड़का गया था घूमने के लिए, उसने पूरा बिल डाला, पूरी वीडियो डाली। एक्चुअली में उसने मंगवाए थे 2 पराठे आलू के, 1100 रुपए के पराठे पड़े हैं उसको, और 550 रुपए का एक पराठा मान लो। और उसके साथ में उसने मंगवाए थे 3 बॉइल्ड एग्स। 3 बॉइल्ड एग का सोच लो कितने रुपए आ जाएगा। 10 रुपए का एक बॉइल्ड एग आता होगा, 15 का आता होगा, मैक्सिमम 20, 30, 40, 50। इसको देने पड़े 350 रुपए, नहीं माफ कीजिए, 500 रुपए देने पड़े सिर्फ 3 बॉइल्ड एग्स के लिए। इसके अलावा एक ड्रिंक मंगवाई उसके 350 रुपये, और GST भी 350 रुपये अलग से लगा था। तो यहाँ पर अब लोग शुरू हो गए, लोग यही कह रहे हैं कि हाँ सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि कुछ चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा महंगी कर रखी है, ओवर प्राइस कर दिया है। और ये कोई प्रीमियम डिश नहीं है, आलू के पराठे कब से प्रीमियम डिश हो गए? सबके घरों में बनते हैं, और सैटरडे संडे में से एक दिन तो बन ही जाते हैं सबके घरों में। तो चलिए आप लोग बताइए कि डोंट यू थिंक दिस इज़ ओवर प्राइज्ड, बताइएगा जरूर। नंबर है जी 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: स्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
3: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था ओवर प्राइज्ड रेस्टोरेंट्स की, जहां पर एक मुंबई का लड़का, उसने वीडियो शेयर की, उसने 1100 रुपए में 2 आलू के पराठे मंगाए थे। तो जैसे ही मैंने ये बात शेयर की तो मेरे पास मैसेज आता है शिवांश जी का। शिवांश भाई, आपने मैसेज तो कर दिया मगर बताया कीजिए कि कहां से आप मैसेज कर रहे हैं। तो इनका मैसेज करने मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, कह रहे कि सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ गए इसलिए शायद 1100 रुपए के 2 पराठे होंगे, बट इतने भी नहीं बढ़े यार कि 1100 रुपए के 2 पराठे। खैर, स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के भी प्राइसेस बढ़ गए हैं, 29 रुपए महंगे हुए हैं, और फिर से किचन गैस महंगी हो गई है, और ये दूसरी बार प्राइस हाइक हुआ है एलपीजी के प्राइसेस में पिछले 3 महीनों में। एंड हम सभी को पता है इस टाइम टेंशंस का कहां पर, मिडिल ईस्ट में जो टेंशंस है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इंडियन हाउस होल्ड्स में, खास करके लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को और बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि एक खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि इंडिया ने अपने खुद का एक ऑयल रिज़र्व ढूंढ लिया है, गैस रिज़र्व ढूंढ लिया है, और नेचुरल गैस मिल गई है इंडिया को, और अब देखते हैं कितनी जल्दी वहाँ प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और कितनी जल्दी इंडिया भी अपना खुद से गैस प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, क्योंकि अभी सोर्स मिला है और ये अंडमान के पास में ही है बहुत, और देखते हैं कितने टाइम बाद इंडिया को भी अपनी नेचुरल गैस मिल जाएगी। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, और वापस आकर बात करते हैं ज़रा डिलीवरी बॉयज़ के बारे में भी, क्योंकि खाने की बात हुई है तो खाना फूड डिलीवरी बॉय भी बहुत मेहनत करते हैं, मगर क्या उन्हें उतनी सैलरी मिलती जितना वो डिज़र्व करते हैं, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए जैस्मिन सैंडलर्स की आवाज़ में ये गाना।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

सुनील औजला की आवाज में था ये गाना। और इसी गाने के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। 7:10 होने वाले हैं मेरी घड़ी में। और इसी के साथ साथ मैं भी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले खाने पीने की, तो फूड डिलीवरी बॉयज़ के बारे में भी बात करना चाहता था। और अगर मैं आप सभी को बोलूं कि एक फूड डिलीवरी बॉय की महीने की कमाई कॉरपोरेट एम्प्लॉय के बराबर है, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? आप लोगों लोगे कुछ भी, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ऐसा हुआ है, सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर दावा किया गया है, मतलब वीडियो में देखो बोल रहे हैं वो खुद से कि डिलीवरी पार्टनर कह रहा है मैं एक महीने में करीब करीब 66,000 रुपये कमा लेता हूँ। तो 66,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट इज़ अ गुड अमाउंट, मतलब ठीक है, अच्छा खासा कमा रहा है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ फूड डिलीवरी करके। और बता दूं आपको, कमाई देख कर ना जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था ना वो चुप हो गया था 10 मिनट के लिए। मतलब वो वीडियो पूरी बुरी, आप लोगों ने शायद देखी होगी ये वीडियो, अगर नहीं देखी तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें डिलीवरी पार्टनर कह रहा है कि मैं कमा लेता हूँ 66,000 रुपये, और वहाँ पर जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है वो चुप हो रहा है, चुपचाप खड़ा है, कहता है भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर कुछ लोग कमेंट करने आ जाते हैं, आपको पता है इंडिया का कमेंट सेक्शन तो अमेजिंग ही होता है। तो कमेंट सेक्शन जैसे ही मैंने खोला तो उसमें देखने को मिला सिर्फ एक ही चीज़, लोग कह रहे हैं भाई मैं जॉब छोड़ दूँ। और सच में ऐसा होता है काफ़ी बार कि दूर के डोले ना सुहावने लगते हैं, मगर सोचिए एक डिलीवरी बॉय जब निकलता है ना घर से, उसको धूप भी झेलनी पड़ती है, उसको बारिश भी झेलनी पड़ती है, उसको काफ़ी बार तो लिफ्ट भी अलाउ नहीं की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसको झेलनी पड़ती है, और ऐसे ही बहुत सारी और भी कहानियाँ होती हैं। खैर, कहानियों से याद आया, एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है मेरे पास, जहाँ पर एक सब्जी बेचने वाले का लड़का करोड़ का घर लेकर आ गया, 1 करोड़ का घर। कैसे लेकर आया सब कुछ बताऊंगा मगर इस गाने के बाद।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

क्या हो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक सब्जी बेचने वाले का लड़का अपने माँ बाप के लिए 1 करोड़ का घर खरीद लाया। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा ना। और बता दूं, इस लड़के की एज सिर्फ और सिर्फ 21 साल है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड ये जो मैं पूरी स्टोरी बता रहा हूं ना, ये मुंबई की है। मुंबई में एक आदमी था, वो सब्जी बेचता था अपना परिवार चलाने के लिए। और उसका जो बच्चा था, बच्चे का नाम है अभिषेक। तो अभिषेक अभी तो सक्सेसफुल है और इसने अपनी सक्सेसफुल स्टोरी भी बताई। एक्चुअली मैं बचपन में अपने फादर के साथ ये सब्जी बेचने जाता था। उसके बाद रोज़ कम से कम 16 से 18 घंटे पढ़ाई करता था। 16 से 18 घंटे पढ़ाई, सोच सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे की नींद। और फिर उसके बाद आज ये लड़का ओमान में चार्टर्ड अकाउंटेंट है और 21 साल इसकी एज है। और अपने मम्मी पापा को भी इसने रिसेंटली 1 करोड़ का फ्लैट गिफ्ट किया है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा, इसके संघर्ष को सलाम है एंड हैट्स ऑफ है ऐसी थिंकिंग को कि हाँ, इतना पैसा कमाने के लिए सबसे पहले गिफ्ट किसको दिया? अपने पेरेंट्स को। तो ये ड्रीम होता है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सभी लोगों का ये ड्रीम होता है। और कि अच्छा हम लोग कमाएं और फिर उसके बाद अपने

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

आज बस ये लगता है यू शुड नो है मन्नू दास का पे आवाज फिर भी मैं जोड़ के हाथ जो भी है पास है उस पे नाज बस कहना है थैंक्स अ लॉट।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे होश दिल चैन वैन सब उसी के पास है।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

जाने का मलाल भी नहीं है, दिल में अब कोई ख्याल ही नहीं है, क्योंकि जा रही है टीम अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान की टीम वापस जा रही है। एक टेस्ट मैच खेलने आए थे, उसमें भी बहुत बुरी तरह से हरा दिया टीम इंडिया ने। हाँ, आपको नहीं पता क्या इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच चल रहा था? मुझे भी नहीं पता था, मुझे तो अभी जस्ट पता लगा कि इंडिया आज जीत चुकी है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड मैं इन सब चीज़ों में इसलिए मतलब नहीं देख पाया मैं क्रिकेट, क्योंकि मैं हिट लेने चला गया था। आप सभी को बताने वो लाल हिट काला हिट चलिए जो भी बात करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए सिर्फ एक टेस्ट के बारे में, जिसमें इंडिया ने बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए 564 रन 8 विकेट के नुकसान पर, और यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया था मैच। मगर फिर उसके बाद हुआ ये कि भाई खेलने आई टीम अफगानिस्तान, और टीम अफगानिस्तान पहली बार में 152 रन बना पाई, दूसरी बार में 112 रन बना पाई। तो इस बार टीम इंडिया ने 300 रन और एक इनिंग से ये पूरा का पूरा मैच जीत लिया है, और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। इसमें एक नया खिलाड़ी है मानव सुथार, इस लड़के ने पूरे मैच में 7 विकेट लिए हैं। तो अब नया टैलेंट आ रहा है टीम इंडिया में, तो इनको भी सलाम करना बनता है। तो चलिए अभी आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए। आगे आने वाले टाइम में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भी चलने वाला है कुछ टाइम में, कब चलेगा सबके बारे में करेंगे बात। मगर उससे पहले आप सभी के लिए न्योली वाला की आवाज़ में ये गाना अप टू यू ओनली ऑन 89.6 FM कुछ हट।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता
2: है। अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो

गाइस क्या आपको मालूम है कि कल बारिश हो सकती है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा गूगल कह रहा है कि कल थोड़ी बहुत बौछार देखने को मिल सकती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड थैंक यू गॉड था ये गाना धोनी भानुशाली की आवाज़ में। अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, वो ये है कि गूगल पे जाके जैसे ही आप सर्च करोगे फरीदाबाद वेदर, तो आप लोगों को दिखाई देगा कि कल शाम को बारिश हो सकती है। और अगर कल शाम को बारिश हो गई तो मतलब ठीक है, फिर मौसम ठीक ठाक हो जाएगा। वेंसडे को भी फिर नहीं होगी बारिश, बट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बारिश देखने को आपको मिल सकती है। और कहा जा रहा है कि थर्सडे की शाम को ये बारिश शुरू होगी, जो कि फ्राइडे की सुबह 3 से 4 बजे तक या फिर हो सकता है कि 8 से 10 बजे तक भी आपको बारिश देखने को मिले। तो अगर 10 घंटे बारिश चालू हो गई तो आप सभी को पता है फरीदाबाद का हाल क्या होगा, मतलब कीचड़ हो जाएगा हर जगह, फिर उसके बाद ट्रैफिक जाम अलग लगता है। चलिए इसी के साथ साथ ये जानकारी मैंने आपको दी, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे आप सभी से फिर से कल शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके अभी वापस आएगी गीत विद इश्कबाजियां, खूब सारी प्यार भरी बातें और प्यार भरे गाने लेकर। मगर उससे पहले मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ये प्यारा सा गाना एड शीरन की आवाज़ में, सिमेट्री, उनके साथ है करुणा औजला। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, घर का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

अभी जो गाना आपने सुना है, गाने का नाम है खत, नवजोत आहूजा की आवाज में है। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, वो सीधा दिल के उस हिस्से तक पहुंच जाते हैं जहां हम अपने सबसे सच्चे जज्ब छुपा कर रखते हैं। खत आज के दौर में शायद सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है, लेकिन कभी खत लिखना सिर्फ लिखना नहीं होता था, वो किसी को अपना वक्त देना होता था, अपना दिल कागज पर उतार देना होता था। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। रात के 8 बज चुके हैं और इस वक्त जब बाहर की दुनिया थोड़ी सी धीमी हो जाती है, अंदर की दुनिया थोड़ी तेज हो जाती है, यादें बातें और कुछ अधूरे खत सब वापस आने लगते हैं। तो चलिए इसी एहसास के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट इश्क शायराना, जहां मैं बात करती हूँ उन अल्फाजों की जो कभी किसी ने लिखे थे लेकिन ऐसे लगते हैं जैसे हमारे लिए ही लिखे गए हों। तो आज का ये एहसास भी कुछ ऐसा है। क्या कभी आपने किसी के लिए कुछ लिखना चाहा है? ये सवाल है आपसे। ऐसा कुछ जो आपने कभी कहा नहीं लेकिन दिल में हमेशा रहा, एक खत जो कभी भेजा नहीं गया, क्योंकि डर था कि अगर वो पढ़ लिया गया तो शायद सब बदल जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा गया तो शायद कुछ नहीं बदलेगा। इश्क में ना सबसे मुश्किल यही होता है कह देना, क्योंकि जो कह दिया जाता है वो कहानी बन जाता है और जो नहीं कहा जाता वो उम्र भर एहसास बनकर रह जाता है। इसीलिए शायद खतों में लिखी हुई मोहब्बत हमेशा थोड़ी ज्यादा सच्ची लगती है, क्योंकि वहां दिखावा नहीं होता, बस दिल में जो होता है वो कह देना होता है। तो आज इश्क शायराना में मैं उन्हीं एहसासों के बारे में बात करूंगी जो कहीं नहीं गए लेकिन महसूस हुए हैं। मैं हूं गीत और ये है इश्क बाजियां। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। अभी मैंने बात की थी उन खतों की जो कभी लिखे तो गए लेकिन भेजे नहीं गए, और कभी कभी खत सिर्फ कागज पर नहीं होते, वो इंसान के लहजे में होते हैं, उसकी बातों में, उसके बदले हुए अंदाज में भी छुपे होते हैं। आज की इस खामोश रात में एक गजल याद आ रही है दाग दहलवी साहब की, तो दाग दहलवी साहब की गजल के ये चार शेर मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। उन्होंने क्या लिखा है, तुम्हारे खत में एक नया सलाम किसका था, ना था रकीब तो वो आखिर नाम किसका था। कितनी अजीब बात है ना, पहले हम किसी के हर लफ्ज में अपना नाम ढूंढते हैं और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब उसी के लफ्जों में किसी और का नाम दिखाई देने लगता है। खत वही होता है, कागज भी वही होता है, लेकिन एहसास बदल जाते हैं। और तब दिल पूछता है कि ये जो बदला हुआ लहजा है, ये जो नया सा अपनापन है, या फिर किसके लिए है। दाग आगे लिखते हैं, वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। इश्क में सबसे खतरनाक चीज पता है क्या होती है, बदल जाना। जब कोई इंसान धीरे धीरे बदलता है और हमें पता भी होता है कि वो हमें चोट दे रहा है, लेकिन फिर भी हम उसी से जवाब चाहते हैं, जैसे दिल को यकीन ही नहीं होता कि जिसने इतना प्यार दिया था वो इतना दर्द भी दे सकता है। और आगे कहते हैं, वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है, ये कलाम किसका था। कभी किसी ने आपसे भी ऐसे वादे किए हैं, वो वादे जो उस वक्त बहुत सच्चे लगते थे लेकिन वक्त के साथ बस लफ्ज बनकर रह गए। इश्क में सबसे ज्यादा तकलीफ धोखा देना नहीं होता है, बल्कि भूल जाना होता है। जब सामने वाला इंसान उन बातों को ही भूल जाए जो कभी उसने बड़ी सच्चाई से कही थी। और आखिर में दाग कहते हैं, गुजर गया वो जमाना, कहूँ तो किस से कहूँ, ख्याल दिल को मेरे सुबह शाम किसका था। यानी अब वो वक्त चला गया लेकिन दिल अभी भी उसके ख्याल में अटका हुआ है। सुबह भी वही है, शाम भी वही है, बस वो इंसान बदल गया है। और शायद यही इश्क की सबसे खामोश सच्चाई है, इंसान चला जाता है लेकिन उसका ख्याल नहीं जाता। मैं हूं गीत, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे उन्हीं अनकहे एहसासों के साथ।

आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और सच कहूँ तो आजकल इश्क ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया है। मतलब लोग फॉरएवर बोलते हैं लेकिन इंटेंशंस टेम्प्रेरी होते हैं। इसी आज के कंफ्यूजिंग से इश्क को बहुत पहले ही समझ लिया था जॉन एलिया साहब ने। उनकी शायरी सीधा दिल पर नहीं लगती लेकिन सीधे सच बोल देती है। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है अपनी खूबसूरत सी गजल में। बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं, बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके खत उन्हीं को लौटा रहे हैं। मतलब इमेजिन करो, किसी को भूलने के लिए आप उसकी सारी मेमोरीज उसे वापस कर रहे हो। टेक्स्ट डिलीट, फोटोज डिलीट, और जो तोहफे कभी उन्होंने भेजे थे वो भी आपने उनको भेज दिया। और ऊपर से ये भी फील कराना, देखो हम कितना मैच्योर बिहेव कर रहे हैं लेकिन अंदर से आप टूट जाते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं, नहीं तरके मोहब्बत पर वो राजी, कयामत है कि हम समझा रहे हैं। आजकल रिलेशनशिप्स में यही तो हो रहा है, एक इंसान ऑलरेडी मूव ऑन करना चाहता है और दूसरा अभी भी लेट्स फिक्स दिस मोड में होता है। एक कन्वेंस कर रहा है और दूसरा कन्वेंस होने को तैयार भी नहीं है। और फिर वो आगे लिखते हैं, ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। कितनी स्कैरी लाइन है ना ये। कभी कभी कुछ रिश्ते शुरू ही इसीलिए होते हैं ताकि एक दिन वो हमें छोड़कर जाने की आदत से खा सके। मतलब आप किसी से मिलते हो, आप उसे अटैच होते हो लेकिन और फिर आपको रियलाइज होता है कि दिस वॉज नेवर मेंट टू लास्ट, बस एक लेसन था। और जॉन ही आगे कहते हैं, तुम्हें चाहेंगे जब छिन जाओगी तुम, अभी हम तुमको अर्जा पा रहे हैं। दिस इज सो रियल। जब कोई हमारे पास होता है हम उसे बहुत लाइटली लेते हैं, सीन करके लेट रिप्लाई, बहुत हाफ एफर्ट्स होते हैं, अटेंशन डिवाइडेड होती हैं। और जैसे वो हमसे दूर जाता है, सडनली आई मिस यू, आई डिडंट रियलाइज योर वैल्यू। इश्क की टाइमिंग बहुत ही गड़बड़ सी है यार। और सबसे डेंजरस लाइन शायद यही है, अजब कुछ रब्त है तुमसे कि तुमको हम अपना जान के ठुकरा रहे हैं। मतलब हम जानते हैं कि वो हमारे अपने हैं फिर भी हम उन्हें ही हर्ट कर रहे होते हैं। क्यों? ईगो, इमैच्योरिटी, अनहील्ड इमोशंस। आजकल का इश्क ना सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, उनमें पास्ट ट्रॉमा, ओवरथिंकिंग और व्हाट इफ भी शामिल होता है। और शायद इसीलिए रिलेशनशिप्स आजकल बहुत कम चल रहे हैं और ओवरथिंकिंग से ज्यादा। तो थोड़ा सा म्यूजिक सुनते हैं, इसके बाद लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। खतों के बारे में बात चल रही है। कभी कभी ना जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो ज्यादा वक्त हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन उनका एहसास, उनकी याद, उनकी मौजूदगी हमारे अंदर बहुत लंबे वक्त तक रह जाती है। और शायद इसी एहसास को बहुत ही नर्म और गहराई से लिखा है गुलजार साहब ने। वो कहते हैं, खुशबू जैसे लोग मिले अफसानों में, एक पुराना खत खोला अनजाने में। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आप बिल्कुल ठीक होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत बिजी, थोड़ा आगे बढ़ चुके होते हैं और फिर अचानक कोई पुरानी चैट, कोई पुराना फोटो या बस किसी का नाम, और वापस आप उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से आपने बहुत मुश्किल से खुद को निकाला था। हम कहते हैं वी आर हील्ड, बट ऑल इट टेक्स इज वन मेमोरी एंड एवरीथिंग्स कम बैक। और फिर शायद शाम के साए बालिश्तों से नापे हैं, चांद ने कितनी देर लगा दी आने में। यहाँ एक शब्द यूज किया गया है बालिश्त। बालिश्त का मतलब होता है हाथ की फैलाव, जैसे हम अपने हाथ की उंगलियों को फैलाकर किसी दूरी को नापते हैं। लेकिन यहाँ इसका मतलब सिर्फ माप नहीं है, यहाँ शायर कहना चाहता है कि उसने इंतजार को इतना महसूस किया है कि हर पल हर साया वो अपने हाथ से नाप रहा हो। इमेजिन करो, आप किसी का इंतजार कर रहे हो और हर मिनट इतना भारी लग रहा है कि आप उसे लिटरली महसूस कर सकते हैं। आजकल हम कहते हैं यार रिप्लाई क्यों नहीं आया, लास्ट सीन कब का है, लेकिन पहले इंतजार ऐसा होता था जहां वक्त को महसूस किया जाता था, गिना नहीं जाता था। और फिर आगे गुलजार साहब ने लिखा है, जाने किसका जिक्र है इस अफसाने में, दर्द मजे लेता है जो दोहराने में। बहुत गहरी बात है। कभी कभी हम खुद को अपने दर्द को बार बार जीते हैं, सेम मेमोरीज, सेम कन्वर्सेशन, सेम एंडिंग, और हमें पता भी होता है कि इससे हर्ट होगा, फिर भी हम वापस वहीं जाते हैं। क्योंकि सच ये है, कभी कभी हम इंसान को नहीं उसके साथ जुड़े एहसासों को मिस करते हैं। और आखिर में गुलजार साहब कहते हैं, हम इस मोड़ से उठकर अगले मोड़ चले, उनको शायद उम्र लगेगी आने में। कितनी सच्ची बात है, हर कोई एक ही स्पीड से मूव ऑन नहीं करता। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से समझता है, और कोई शायद कभी समझ नहीं पाता। और शायद यही प्यार की सबसे खामोश सच्चाई है, टाइमिंग कभी परफेक्ट नहीं होती। कोई जल्दी आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है, और कोई बहुत पीछे रह जाता है, और बीच में रह जाती हैं कुछ यादें, कुछ अधूरी बातें और कुछ अनकहे खत। मैं हूं गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। देखो, देखो।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके
4: लेकिन

गाना है फिल्म चलती का नाम गाड़ी से और गाना है किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत आवाज में। और इसी गाने के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ शो इश्क बाजिया में, हूँ इश्क वाली गीत। और अब समय है रेट्रो इश्क का, जहां मैं लेकर आई हूँ आज एक और ही बहुत ही खूबसूरत सी प्रेम कहानी, उस जमाने की प्रेम कहानी। बॉलीवुड में तमाम प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनको उनके रिश्ते की मुकम्मल मंजिल मिल गई, वहीं कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनकी दास्तान अधूरी रह गई, जिनका अंत बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो जो मेमोरीज क्रिएट हुई ना वो बहुत अच्छी थी। तो इन्हीं यादों को आप तक पहुंचाती हूँ रेट्रो इश्क के जरिए। और आज एक ऐसी ही लव स्टोरी लेकर आई हूँ कि जिन्हें प्यार हुआ, इकरार हुआ और मंजिल भी नहीं मिली। ये बहुत ही खास सी लव स्टोरी है जिससे आज आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन अभी वक्त गाने का है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

अगर किसी से इश्क हो तो वो आंखों से ही पता चल जाता, अगर किसी से कोई बात कहनी हो तो वो इशारों में ही हो जाती। और हाँ, जहाँ किसी को दिल की बात कहने में, इजहार इश्क करने में बहुत वक्त लगता, पहले उसे समझा जाता, फिर खतों के जरिए उस तक अपनी बात पहुंचाई जाती, और फिर ये भी देखा जाता कि हाँ क्या उसे भी उतना ही इश्क है। क्या खूबसूरत सा जमाना था ना ये, जहाँ किशोरदा के, रफी साहब के, लता जी की आवाज में बहुत खूबसूरत से गाने होते और किसी को ये गाने डेडिकेट भी किए जाते। उसी रेट्रो वाले जमाने की, उसी रेट्रो इश्क की बातें होंगी यहाँ पर। अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

कुछ अनसुनी कहानियाँ मिलती हैं गलियों से, कुछ जज्बात भरी अनोखी निकलती हैं दिल से। फरीदाबाद की गलियों में सिर्फ रास्ते नहीं, कहानियाँ भी बसी हैं। कहीं एक पुरानी हवेली अपनी कहानी सुनाने को बेकरार है।

0: हरकतें जानता होगा।
1: अब पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोए हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: अब तू बोलता रहे भाई, हम चलते।

कुछ वादे सच्चे होते हैं, लेकिन ये वादे ताउम्र निभाए जाएं ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसे मंजूर नहीं होती हैं, और ये रिश्ते, ये जो मोहब्बत होती है, ये अक्सर अधूरी रह जाती है।

गाना है फिल्म हम किसी से कम नहीं और गाना है पूर्णिमा और रफी साहब की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क में आज बातें होने वाली है एक उस जमाने की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। और जैसे कहते भी हैं कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो अक्सर अधूरी रह जाती है, और ये अधूरी मोहब्बत थी राज कपूर साहब और नरगिस की। वैसे दोनों की रियल लाइफ में तो बहुत ही अच्छी जोड़ी थी, बहुत ही सुपर हिट जोड़ी थी। इवन लोगों को ये जोड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों ने बैक टू बैक फरमाइशें की इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने की। असल जिंदगी में भी उतनी ही जोड़ी एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों कभी साथ नहीं रह पाए। इनकी स्टोरी भी ना बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसी है। इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
2: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
3: रेडियो महारानी 89.6 FM कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है रेट्रो इश्क। बातें चल रही हैं राज कपूर साहब और नरगिस की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। एक ऐसा इश्क जो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उस इश्क में एक अलग सी बात थी। ये इश्क बेपनाह था। वैसे हिंदी सिनेमा में कई प्रेम कहानियां बहुत फेमस हुई जिनके आज भी चर्चे होते हैं। उन्हीं में से ये जोड़ी थी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त की। इनकी दास्तान बहुत ही खूबसूरत है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर भी प्यार से ये दिल भला क्यों डरा। ये गाना दोनों पर एकदम फिट बैठता है। दोनों के बीच बेपनाह प्यार था, फिर भी ये दास्तान कभी पूरी नहीं हो पाई। राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, पर किस्मत को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। और इन दोनों की केमिस्ट्री तो वैसे फिल्मों में गानों में भी दिखाई देती थी। और जब इनकी पहली मुलाकात हुई, उस वक्त नरगिस हिंदी सिनेमा में काफी अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बहुत अलग है और बहुत ही खास है। दरअसल राज कपूर मिलने गए थे नरगिस की माँ से, लेकिन दरवाजे पर सबसे पहले इनकी नजर जब पड़ती है नरगिस पर, तो ये उन्हें देखते रह जाते हैं और अपना दिल हार जाते हैं। और इसे कहते हैं पहली नजर की मोहब्बत। जहाँ ये इस कदर अपना चैन खो देते हैं कि ये दोस्ती कर लेते हैं नरगिस के साथ, और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। तो इस तरह से इनकी पहली मुलाकात होती है। और इसके बाद दोनों ने काफी सारी फिल्में एक साथ की। बरसात के बारे में अगर बात करूं, 1949 में जो आई थी, उसके बाद प्यार, आवारा, आशियाना, पापी, श्री 420, चोरी चोरी, बहुत सारी फिल्मों में ये एक साथ नजर आए। और मैंने कहा ना, उस टाइम की बहुत डिमांडिंग जोड़ी थी। और आज इसी जोड़ी के बारे में बातें चल रही है। फिलहाल वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां। मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

गाना है फिल्म चुपके चुपके से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है रेट्रो इश्क, जहां बातें चल रही हैं रेट्रो की बहुत ही फेमस जोड़ी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में, जहां नरगिस से पहली नजर का प्यार हो जाता है राज कपूर साहब को और वो उनके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं। राज कपूर साहब उस वक्त शादीशुदा थे, इतना ही नहीं उनके बच्चे भी थे और ये बात नरगिस को भी पता होती है, लेकिन इसके बावजूद वो भी प्यार कर बैठते हैं राज कपूर से और इसके बाद हर बार वो राज कपूर के साथ फिल्मों में आने लगती हैं और हर फिल्म उनकी हिट हो जाती है और दोनों ऐसे ही बैक टू बैक बॉलीवुड को बहुत हिट फिल्में दे रहे थे। उस दौरान इन दोनों को बॉलीवुड के क्लासिक कपल भी कहा जाता, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है और 9 साल के एक रिश्ते में रहे जहां नरगिस ने राज कपूर का इंतजार किया 9 साल, शादी भी करना चाहती थी लेकिन राज कपूर चाह कर भी उनके पास लौट कर ना आए और इस तरह से ये जो मोहब्बत थी ये इश्क की कहानी अधूरी रह गई। यहाँ बातें हुई राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में और फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहे, बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचे।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना,
3: और अगर सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना।
4: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हट्टी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं इश्कबाजों की दिल दिया गल्ला।

गाना बहुत खूबसूरत है और गाना है फिल्म ऐ दिल है मुश्किल से। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। आपके दिलों की बातें जो हैं वो आप तक पहुंचानी है और आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आई हूँ दिल दियां गल्ला में। कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और दोस्ती होती भी है तो धीरे धीरे वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। और बहुत सारे लोग ना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार क्या होता है ऐसा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जबकि दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी के साथ थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जब आपको उसकी हर बात से फर्क पड़ता है, चाहे दोस्ती क्यों ना हो, जब आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं और सेम सामने से भी वही फीलिंग है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स के जरिए ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। इसी के बारे में बातें होंगी, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, अगला गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से हमनवा।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
4: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
5: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना। रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है दिल दिया कल्ला। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, मैसेज है मेघा का, और ये लिख रही है कि दोस्ती को प्यार में बदलने से कैसे रोका जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स पर तो आपका कंट्रोल नहीं होता, वो हो जाती हैं और कई बार गो विद द फ्लो आपको भी हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जरूर आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जनाब वो दोस्ती ही क्या जिसमें प्यार ना हो, ऐसा तो लोग कहते हैं, पर प्यार तो वो हसीन एहसास है ना जो हर रिश्ते में एक अलग सी बात ला देता है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि प्यार मर्जी से नहीं होता, ये हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, कई बार अगर आप दिल से एक्सेप्ट कर लेना कि सामने वाले से आपको प्यार नहीं होगा तो यकीनन प्यार नहीं होगा। अगर आपने दिल से ही सोच लिया है कि आपके दिल में है कुछ उसके लिए, तो आप खुद को कैसे रोक पाएंगे। इसीलिए अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपको किसी से प्यार है या नहीं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आप ये देख सकते हैं कि आपको उसकी चिंता तो नहीं रहती। जैसे आप जब भी उसके बारे में सोचते हैं किसी बात को लेकर, तो आप परेशान हो जाते हैं, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम से आप परेशान होते हैं, और आप हर बार कोशिश करते हैं कि वो इंसान अच्छा फील करे, आप उसे सही रास्ते पर ले जा पाए, या आपको किसी की याद आती रहती है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मुबारक हो मेरे दोस्त, आप प्यार में हैं। और अब अगर आप प्यार में हैं तो ये पक्का है, पर प्यार जो है वो बहुत से रिश्तों में हो सकता है, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता। जैसे कि मेघा का सवाल आया है कि कैसे बचा जाए, तो दिक्कत प्यार में नहीं है, प्यार को समझने में है। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई प्यार नहीं करता, तो सामने से ये रिप्लाई आता है कि आपको भी इसी तरह की सेम फीलिंग्स हैं। तो मेघा मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्ती में प्यार होता है, लेकिन दोस्ती में और प्यार में एक थिन लाइन होती है। दोस्ती में किसी की केयर होती है, किसी को आप समझते हैं, लेकिन हाँ जब इमोशंस का बहुत जुड़ाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप प्यार की तरफ खिंच जाते हैं। तो आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वाकई में इस प्यार से बचना, और अगर बचना नहीं चाहते तो गो विद द फ्लो। फिलहाल वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

संग हूँ तेरे गाना है फिल्म जन्नत 2 से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्कबाजियां। मैं हूँ इश्क वाली गीत और सेगमेंट है दिल दियां गल्लां और प्यार के बारे में बातें चल रही हैं। ये जो प्यार होता है ना कई बार बहुत अजीबोगरीब माहौल में हो जाता है। आप सोचते रह जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। एग्जाम्पल के लिए किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है और उससे आपको प्यार हो जाए, जहां एक दूसरे से आपने बहुत सारी बातें की हैं, रिश्तों पर एक दूसरे को बहुत सारी सलाहें दी हैं, एक दूसरे का मजाक बनाया है पुराने रिश्तों पर, लेकिन आपको एक टाइम बाद एहसास होता है कि आपको तो उसी से प्यार हो गया, बल्कि आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, आपके मन में तो कुछ ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आपने सोच लिया और आप फिर ये भी सोचते हैं कि सामने वाले के मन में अगर ऐसी कोई चीज ना हो, ऐसी कोई फीलिंग ना हो, तो खामखाही गलत फहमियां बढ़ेंगी और गलत कदम उठाकर आप उसकी दोस्ती को भी खो दोगे। इसीलिए आप शायद सोचते हैं कि आपको उसकी जिंदगी से अब दूर रहना है या उस इंसान से दूर चले जाना है। और इसमें होता यह है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती कहीं खो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। तो आपको खोना नहीं है और आपको ये भी जानना है कि सामने वाले को भी उतना ही इश्क है या नहीं है या क्या फीलिंग है, तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ शो इश्कबाज़ियां। मैं हूँ इश्क वाली गीत और गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: ए भाई दरा देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहे, बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचे।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
4: डियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ऑनलाइन दुनिया एक डिजिटल मेला है जहाँ हर चमक सोना नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद। एक दिन मुझे ऑनलाइन दिख गए कोरियन बूट्स सिर्फ 500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा क्या कमाल की डील है, तभी तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और फिर जो हुआ, मेरे घर आए सिर्फ 500 रुपए का चूना। बूट्स तो कभी आए नहीं, बस मेरा दिल बोला अलेक्सा प्ले हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स। इसलिए ओटीपी पासवर्ड बैंक डिटेल्स किसी को मत दीजिएगा, और कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे तो समझ जाओ स्कैम का जादू चल रहा है। रमेश बाबू अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, वरना ऑनलाइन बाजार आपको भी कोरियन बूट्स का चूना लगा देगा।

गाना है फिल्म कभी हाँ कभी ना से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और यहाँ पर बातें चल रही हैं कि जब किसी से दोस्ती हो और वो प्यार में बदल जाए, और आपको ये डर रहे कि सामने वाले को अगर ये बात पता चलेगी तो वो जो खूबसूरत सी दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको टाइम बहुत कम स्पेंड करना है। अब आप ये सोचेंगे कि गीत ऐसी बात क्यों कह रही है, बल्कि टाइम तो ज्यादा गुजारना चाहिए तभी तो आप समझ पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा समय अपने लिए बिताना है। ध्यान भटकाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल ना रहे, उनके मैसेजेस का और कॉल्स का जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगाए यार, ताकि आपको भी तो पता चले कि उनको इंटरेस्ट है आप में या नहीं। तो आपकी जो गैर मौजूदगी है वो उन्हें आपकी याद दिलाने वाली है, और उन्हें लगेगा कि आपको ऐसा क्या हो गया कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोचेंगे। और कहते हैं ना, जो चीज हमसे दूर जाने लगती है हमें तभी उसका ख्याल आता है, और हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी उन्हें आपके ना होने का एहसास दिला दे, और उन्हें एहसास दिला दे कि शायद आपने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया था, इसीलिए वो कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि उनको भी मोहब्बत है या नहीं, और यहाँ दोस्ती भी नहीं टूटेगी और आपको भी पता चल जाएगा। और देखिए, इतनी सारी बातें हो गई हैं सेगमेंट दिल दिया गल्ला में, अभी मेरे जाने का है समय। मैं मिलूंगी आपसे कल जहाँ ढेर सारी बातें होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM को, छटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक में क्लिक ना करें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: अभी बाकी है मेरे दोस्त।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।

0: कहानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: बस ऐसा पथ जो चले तो भव सिंधु पार उतर जाता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: आपको अपने साधक जीवन का एक छोटा सा अनुभव बांट रहा हूँ। श्री राम सुखदास जी की एक पुस्तक पढ़ रहा था किसी दिन में, और श्री स्वामी जी ने अपने जीवन का एक अनुभव उसमें कहा था कि हमारे जीवन में, हमारे साधन काल में एक क्षण ऐसा आया जब हमने अपने मन में ये संकल्प किया कि अब हम कोई संकल्प नहीं करेंगे। मन करेगा तो करेगा, पर हम उसके संग नहीं चल देंगे, हम उसके साथ नहीं चलेंगे, चाहे वो संकल्प पारमार्थिक संकल्प ही क्यों ना हो। यहाँ के रसिकों ने कहा है, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन है मम नयन सदा भगवत सन। स्वामी जी ने कहा चाहे वो पारमार्थिक संकल्प भी क्यों ना हो, हम कोई संकल्प नहीं करेंगे, बस अपने अपने श्री हरि की इच्छा में हमने अपनी सब इच्छा मिला दी, अब राजी हैं हम उसी में और जिसमें तेरी रजा है। और मैं

नहीं, ये भक्ति की सरलतम व्याख्या है। और स्वामी जी ने आगे लिखा कि भाई अब हमें तत्व प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ और नहीं करना है। और जाने उस एक पंक्ति में कैसी शक्ति थी, कैसी ऊर्जा थी कि वो शब्द मेरे भीतर गए, उन शब्दों ने समय आने पर अपना प्रभाव दिखाया। तो भक्ति मुझे लगता है यही है भाई, इसी को समर्पण कहते हैं। भक्ति का प्राण समर्पण है, और यही समर्पण जब अपने मन की कोई इच्छा ना रहे, और मन इच्छा करे तो करने दीजिए, आप मन के पीछे मत चलिए।

अमृत मोह सिंधु की दारा, काढ़ दया कर कर मोहि पारा। रोगी वैद्य से कह रहा है कि मुझ पर कृपा करो और मैं डूबता जा रहा हूँ इस मोह सिंधु की धारा में, किसी प्रकार मुझे पार करो। हो अति दीन महा दुख पावत, लोग कुटुंब को मुंह ना लावत। क्या आवश्यक है जीवन में अपनी ये झांकी देखना, क्या आवश्यक है कि हम अपनी ऐसी दुर्दशा जीवन में देखें। ये जो समय है ना आपके पास, ये जो जीवन है आपके पास, यही आपकी निधि है, यही आपकी संपत्ति है। कबीर जी ने तो एक बड़ा विस्तृत प्रसंग कहा है, मैं प्रयास करूंगा कल लेकर आऊं कबीर जी की वाणी का वो प्रसंग। वो कहते हैं कि भाई कर सको तो नित्य करो, नित्य नहीं करो तो सप्ताह में करो, नहीं तो एक मास में, नहीं तो एक वर्ष में। इस प्रकार उन्होंने बड़ा सुंदर रूपक दिया है जीव को प्रबोध देने के लिए। जो समय है ना, यही आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। महीना में 30 दिन होते हैं ना, तो 3 दिन जाकर समझिए धाम में रहना है। लेकिन धाम में कैसे रहना है, साधक की भांति रहना है। श्री डोंगरे जी महाराज जी बात कहते थे कि तीर्थ का प्रसाद तभी मिलता है, तीर्थ सेवन का फल लाभ तभी है जब आप तप पूर्वक तीर्थ में रहें। और यहां की बात करूं तो मैं तो आपको सदा कहता हूं कि भाई आपको मुझे तो प्रियालाल ने अपने घर में रखा है। ये राधा मोहन का निज मंदिर है ये वृंदावन धाम। यहां तो एक ही विधि है बसने की कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष ना दीजे जान। आप कहीं भी रहते हो, कितने भी काल के लिए आप वृंदावन आते हो, पर यहां पर उपासक बनकर रहिए, यहां पर साधक बनकर रहिए। भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसे जो कोए, प्रेम बीज तिही खेत ते तब ही अंकुर होए। और समय रहते चेत जाइए, सबसे अमूल्य निधि, सबसे अमूल्य संपत्ति आपका जीवन है। और जीवन क्या है, जन्म से मृत्यु के बीच के समय को ही जीवन कहते हैं। ये समय आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। इसका कुछ हिस्सा अवश्य भगवत भजन में लगाइए, इसका कुछ हिस्सा अवश्य आत्मचिंतन में लगाइए। नहीं तो भाई यही झांकी है कि हो अति दीन महा दुख पावत और लोग कुटुंब को न मुंह लावत। बड़े बड़े घरों में देखा है भाई मैंने कि जो घर के वयोवृद्ध जन होते हैं वो घर के एक कोने में पड़े रहते हैं, कोई उनके निकट भी नहीं जाना चाहता। उस वृद्ध व्यक्ति को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, भोजन वो अब अधिक कर नहीं सकता, वस्त्र आभूषण का कोई सुख रहा नहीं। उस वृद्ध को तो केवल इतना चाहिए कोई दो घड़ी उसके उसके पास बैठकर प्रेम से बात कर ले, और वो दो घड़ी प्रेम से बात करने वाला कोई नहीं होता। और जीव अपनी दुर्दशा का विचार करके रोता है, पर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब रसना थकी न बोलियो जाई, जब ऐसी स्थिति आए तब इसका विचार करने का क्या लाभ है। मैं भाई बल देकर एक बात कहा करता हूं, सही निर्णय तभी सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। अगर समय चूका तो कितना भी सही निर्णय क्यों ना हो, भजन करने से ज्यादा सही निर्णय कोई नहीं है। लेकिन समय चूक जाने पर यदि आप भजन करना आरंभ करते हैं तो उसका वो लाभ नहीं होता जो होना चाहिए। और कोई कहे कि भाई आप संत लोग कहते हैं कि अंत समय भगवान नाम का स्मरण करने से गति हो जाती है, अरे गति तो हो जाती है, गति तो हो जाती है। अरे ये जीवन मिला इसका सुख तो पाते, इसका आनंद तो लेते। ये जीवन का एक एक दिन सुख स्वरूप हो जाता, जीवन का एक एक क्षण उत्सव स्वरूप हो जाता यदि समय रहते चेत जाते, सभी समय रहते गुरु के चरणों से लगकर और भगवत भजन करना आरंभ कर देते। नहीं तो भाई गलितम मुंडम शंकराचार्य कहते हैं ना, अरे मूढ़ मती, जब समय चला जाएगा मुख में दांत नहीं रहेंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, तेरा कोई अपना तेरे निकट नहीं आएगा, क्यों उस समय की, क्यों उस अपनी दुर्दशा की प्रतीक्षा करता है। भज गोविंदा।